मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन EIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार रिले होंगे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना

देशभक्ति की भावना देश के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करती है। स्वच्छता, सद्भावना, सम्मान, समर्पण, ये सब हमारी देशभक्ति के ही पर्याय हैं। इसीलिए प्रत्येक देशवासी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ।

भक्ति के स्पर्श के बिना हमारा ज्ञान बाल की खाल निकालने में उलझने लगता है, परंतु जो अपने ज्ञान और भक्ति का सही मेल करना सीख जाए, उसके अंतर्मन का लक्ष्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा ईश्वर तक स्वमेव पहुंच जाती है।

ज्ञान योग मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि के परिमार्जन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान खुली आंखों से चलने वाला मार्ग है और भक्ति बंद आंखों से तय की जाने वाली यात्रा। दोनों का लक्ष्य ईश प्राप्ति हो सकता है, परंतु भक्ति का केवल एक ही अर्थ है, स्वयं से मुक्ति प्राप्त कर लेना।

हमारे नेत्र केवल संसार का बाहरी आकर्षण देख सकते हैं, परंतु हमारा अंतर्मन कब, कहाँ, क्या देखता है, यह हमारे मन की भावना पर निर्भर करता है। महाकवि सूर ने अंतर्मन को जागृत किया और प्रभु को पा लिया। आइए अपने अंतर्मन में विराजमान करें परम पिता परमेश्वर को।

भक्ति का एक अर्थ है स्वयं को शून्य बना लेना। संपूर्ण तर्कों का विसर्जन जब हम करेंगे तभी आस्था की सीढ़ी निर्मित होगी, और यही समर्पण अर्थात ज्ञान शून्य हो जाना हमें अपने आराध्य तक पहुंचा सकता है।

0: आज के इस कार्यक्रम में आपने समूह स्वर के अलावा सुमन कल्याणपुर और शर्मा बंधु की गायी रचनाएं सुनी। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर है ए हरिहरन का, संगीत सतीश भाटिया का।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी, जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे, लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की, ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हुआया और इनकी टाएं टाएं सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था ए हरिहरन का, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन।

0: विषय है चरित्र। आलेख डॉक्टर सुरेश सम्राट का है।
1: चरित्र मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए पूरे विश्व में श्रेष्ठ चरित्र के मनुष्य को नायक और पतित चरित्र के व्यक्ति को खलनायक की संज्ञा दी जाती रही है। चरित्र को शिक्षा से भी ऊपर माना गया है। प्रसिद्ध विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं, चरित्र है, और यही उसका रक्षक है। चरित्र को लेकर यह लोकोक्ति भी प्रचलित रही है कि जब धन जाता है तब कुछ भी नहीं जाता, जब स्वास्थ्य जाता है तब कुछ जाता है, लेकिन जब चरित्र जाता है तब सब कुछ चला जाता है। जीवन पर्यंत चरित्र का साथ होते हुए और चरित्र के संबंध में सारे ज्ञान होने के बावजूद व्यक्ति अपने ही चरित्र के साथ जो छल करता है उसे विडंबना ही कहा जाएगा। छल की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। यह जानते हुए भी चरित्र जब एक बार गिर जाता है तब मिट्टी के बर्तन की तरह चकनाचूर हो जाता है। यह सच है कि समय के प्रभाव से जीवन मूल्य प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन शाश्वत जीवन मूल्य कभी नहीं बदलते। चरित्र ऐसी ही सर्वज्ञात मानवीय गुण है जिसके मूल्यों की सीमा प्राचीन काल से ही स्थिर एवं सुनिश्चित रही है। ऐसा होते हुए भी इसी मानवीय गुण के साथ सबसे ज़्यादा उपेक्षा अपेक्षा जुड़ी रही है। ज्ञान का दायरा ज्यों-ज्यों बढ़ा है और बुद्धि ज्यों-ज्यों विकसित हुई है, चरित्र त्यों-त्यों संदेह के घेरे की तरफ बढ़ा है। हालांकि इसके दुष्परिणामों और उनसे उत्पन्न विसंगतियों से हर देश काल को जूझना पड़ा है, लेकिन चरित्र के डगमग होने का सिलसिला भी प्रत्येक देश काल में जारी रहा है। चरित्र को लेकर एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि आखिर छोटी मोटी परिस्थिति भी चरित्र को क्यों प्रभावित कर लेती है, वह भी उस समय जब विश्व का कोई धर्म और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जिसमें मानव के संदर्भ में चरित्र प्रमुख न रहा हो अथवा उनके द्वारा परिभाषित चारित्रिक गुणों में कोई ज़्यादा फर्क हो। यदि चरित्र है तो आस्था, अहिंसा, निष्ठा, कर्म, सत्य, सद्भाव, दायित्व, परोपकार और एकता जैसे गुण तो स्वतः ही वहाँ होंगे और धर्म तो वहाँ होगा ही, लेकिन यदि चरित्र नहीं होगा तो ये सब भी वहाँ नहीं होंगे। चरित्र के बिना ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, बल्कि वह बुराई की ताकत बन जाता है। माता पिता से मिलने वाले संस्कार और स्कूल की प्रारंभिक कक्षाओं में मिलने वाले ज्ञान से बचपन में जिस चरित्र का निर्माण होता है वह जब बाहरी दूषित परिवेश से टकराता है तो चरित्र की यह बुनियाद भरभरा कर गिरने लगती है। असत्य, हिंसा, स्वार्थ, अहंकार, बेईमानी जैसी प्रवृत्तियां युवा अवस्था से ही चरित्र को ऐसे प्रभावित करना शुरू कर देती हैं कि जीवन पर्यंत इन्हीं प्रवृत्तियों की गिरफ्त में व्यक्ति उलझकर रह जाता है। ऐसे वातावरण में जिस चरित्र का निर्माण होता है उसमें सद्भावनाओं को स्थान मिल पाना कठिन हो जाता है और यहीं से चरित्र के दुष्प्रभावित होने की शुरुआत होने लगती है। वस्तुतः चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है और एक बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। आदतें प्रारंभ में इतनी मामूली लगती हैं कि व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे पाता और बाद में वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है और यहीं से चरित्र का डगमगाना शुरू होता है। व्यक्तियों के चरित्र से समाज का चरित्र बनता है और समाज के चरित्र से राष्ट्र का। जहाँ यह समीकरण होता है वहाँ धर्म, संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता भी सुनिश्चित होती है। हमने अपने प्राचीन को इसी श्रेष्ठता के साथ जिया है, लेकिन जब चरित्र के नाम पर ढोंग का बोलबाला हो तो यह समीकरण भी बिखरने लगता है। इस स्थिति में चरित्र के अस्तित्व को ढूंढ पाना भी कठिन हो जाता है। इसके विपरीत यदि व्यक्तिगत चरित्र ऊंचे होंगे तो समाज स्वयं अपनी परवाह करेगा और श्रेष्ठ सामाजिक चरित्र से राष्ट्र की गरिमा को ऊंचा उठाना संभव होगा। यह भी सच है कि यदि चरित्र का निर्माण न हुआ तो सारे रचनात्मक कार्य भी व्यर्थ ही साबित होंगे। प्रगति अपनी विद्रूपता दिखाने लगेगी और जीवन की सारी श्रेष्ठताएं मुंह फेरने लगेंगी। इसीलिए चरित्र की रक्षा किसी भी कीमत पर होनी ही चाहिए। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने ठीक ही कहा है, चरित्र का जो मूल्य है वह और किसी वस्तु का नहीं।
0: अभी आप सुन रहे

0: ये थे चिंतन। विषय था चरित्र। आलेख था डॉक्टर सुरेश सम्राट का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है जैविक कीट प्रबंधन। वार्ताकार हैं डॉक्टर के नैमा।
1: किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे आपसे कृषि चर्चा में जैविक कीट प्रबंधन। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जैविक कीट प्रबंधन का मतलब होता है कि जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनका जैविक रूप से हमें प्रबंधन करना, मतलब नियंत्रण करना है। जैविक से मतलब यहाँ पर यह है कि जो अन्य जीवधारी हैं या अन्य कीड़े हैं जो हानिकारक कीड़ों को खाकर उन्हें समाप्त करते हैं, तो ऐसे नियंत्रण को हम बोलते हैं जैविक कीट नियंत्रण। तो ये समस्या इसलिए आई है, अपन को इसलिए चर्चा करना पड़ रही है इसकी, कि अंधाधुंध अविवेकपूर्ण जो उपयोग हम कीटनाशकों का करते हैं तो उसके कारण काफ़ी नुकसान हो रहे हैं, वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए हमें अन्य उपायों पर चर्चा करनी पड़ी। तो अन्य उपाय जो हैं उनमें से एक ये हमारा जैविक कीट प्रबंधन या नियंत्रण भी है। इसमें क्या होता है कि कई जो रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फफूंदी है, तो ये हमको जो नुकसान पहुंचाते हैं कीड़े, उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं या खेत में पौधों के ऊपर हम छिड़काव या भुड़काव कर देते हैं, तो इसको खा करके और हमें नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनमें बीमारी फैल जाती है और इस तरह से बिना प्रदूषण फैलाए कीट नियंत्रण जो है हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ कीड़े ऐसे हैं कि जो नुकसान करने वाले कीड़ों की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने अंडे दे देते हैं, तो अंडे दे देते हैं उनसे जो उनके बच्चे निकलते हैं, तो हमें नुकसान पहुंचाने वाली जो इल्लियां हैं, अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं, बच्चे निकल आएंगे मतलब इल्लियां निकल आएंगी, तो वो हमको मतलब इल्ली के ऊपर भी वो नुकसान अंडे दे देते हैं, तो उसके अंदर जो है प्राकृतिक कीट हैं, हमारे जो मित्र कीट हैं, इनके बच्चे जो है निकल के और उसको इल्ली को समाप्त कर देते हैं, या संखी होगी या वयस्क होंगे, यानी किसी भी अवस्था को ये कीड़े खाकर उन्हें चट करके और उनका नियंत्रण कर देते हैं। इसी तरह से कुछ कीटाहारी कीट होते हैं, मतलब कीटों को खा के नुकसान पहुंचाने वाले, ये तो अभी जो मैंने बताया उनको बोलते हैं परजीवी कीट, और दूसरा होते हैं परभक्षी कीट, यानी ये परभक्षी कीट क्या करते हैं कि समूचा खाने लगते हैं। दूसरे जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, जैसे माहो है के जो अंडे हैं या छोटी छोटी जो इल्लियाँ हैं, उनको ये क्या करते हैं, खाते हैं, बजाय मतलब उनके अंदर पनपने के उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं सीधा। इनको शिकारी कीट भी बोलते हैं, परभक्षी। परभक्षी मतलब दूसरे कीड़ों के ऊपर भक्षण करने वाले शिकारी कीट, तो ये परभक्षी कीट कहलाते हैं। इसी तरह से क्या है कि कुछ दूसरे जो जीव जंतु हैं, अपने घरों में छिपकली देखी होगी, छिपकली जो है दीवारों पर चलती है जब, तो वो क्या करती है, नुकसान पहुंचाने वाले जो मच्छर वगैरह जो रहते हैं, जो दूसरे कीट रहते हैं, उनको खाकर अपना काम चला लेते हैं। छछूंदर जो है ये छोटे छोटे कीटाणुओं को खाती है। कुछ चिड़ियाँ होते हैं, बगले होते हैं, पक्षी मयूर होते हैं, मोर होती है, तो हम क्या करते हैं कि अपने खेतों में खूंटियाँ लगाने की आप लोगों को सलाह देते हैं समय समय पर, के फसल से थोड़ी ऊंची खूंटियाँ अपने खेतों में लगा दें, 40 या 50 प्रति हेक्टर खूंटियाँ लगती हैं, तो उसमें क्या होता है कि पक्षी या चिड़ियाँ, जैसे मैना होती है, घरेलू चिड़िया होती है, काली जो मैना होती है वो, तो ऐसे पक्षी खूंटियों पर बैठ के और क्या करते हैं, एक पतली आवाज़ निकालते हैं। पतली आवाज़ निकालने से क्या होता है कि इल्ली जहाँ पर स्थित होती है तो वो हिलने डुलने लगती है, तो उनको मालूम चल जाता है पक्षियों के ये यहाँ पर इल्ली है। वहाँ जो कंपन पैदा होता है उसकी आवाज़ से, तो इल्ली को थोड़ा कष्ट होता है और वो आवाज़ सुन के इल्ली हिलने डुलने जब लगती है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको खा लेते हैं। तो ये जैविक कीट नियंत्रण के अंतर्गत ही आता है। अब आपने सुना होगा, वैज्ञानिक जो अनुशंसा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एनपी वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस नाम का वायरस है, तो उसका छिड़काव करते हैं हम फसलों के ऊपर, जो उससे बीमारी फैल जाती है इल्लियों के ऊपर, खासतौर से चने की इल्लियों के ऊपर, तो उससे वो जो इल्ली है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से बीटी हो

0: होता है उसको खा के और बीमारी फैल जाती है, बैक्टीरियल बीमारी। तो इस तरह से हमारा कहना ये है कि आप लोग जैविक कीट नियंत्रण को अपनाने की कोशिश करें तो हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित नहीं होगा। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, विषय था जैविक कीट प्रबंधन। वार्ताकार थे डॉक्टर के नेमा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्तियों को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार 5वें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानते हैं सभा के शेष कार्यक्रम। आज सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की जयंती पर

चर्चा मध्य प्रदेश शासन मुक्ति बोध सृजन पीठ के निदेशक ऋषि कुमार मिश्र से। विश्व जैव विविधता दिवस पर चर्चा बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं सरोवर विज्ञान विभाग की एचटीओ डॉक्टर अभिलाषा भावसार से और भारत भवन में आयोजित कार्यक्रम संतवाणी समारोह की जानकारी भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम शंकर शुक्ल से।

8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर आपको सुनवाएंगे गांधी चर्चा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 9:30 पर। सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी। 10:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला संसार सुना जा सकता है। इसमें आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला सुना जा सकता है। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित राजन साजन मिश्र का ख्याल गायन, राग होगा बिलास खानी तोड़ी। 7:21 पर सुनिएगा ग्राम सभा। आइए अब जानते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में आज सुबह 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12 बजे आपको सुनवाएंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। 12:30 पर आप सुन सकते हैं संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंचतंत्र का 9वां भाग। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला संसार महिला सभा सुना जा सकता है दोपहर 1 बजे। और 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। सुगम संगीत आप सुनेंगे 1:45 पर। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। 2 बजे आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। आपकी फरमाइश आपको सुनवाएंगे 2:30 पर। आज के सांध्यकालीन सभा के आकर्षण इस तरह से होंगे। 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम विवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 5:33 पर। 6 बजे आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत सुर्खियों में। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर खेल जगत आप सुनेंगे। इसमें आज आप सुनेंगे अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026 विषय पर देवेंद्र खुराना की वार्ता। 9:45 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। और रात 10 बजे आपकी फरमाइश आप सुन सकते हैं। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रचनी सुना जा सकता है। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित राजन साजन मिश्र का ख्याल गायन, राग होगा यमन। 3 जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, लू के थपेड़ों से लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम भोपाल में होने वाले इस प्री समिट इवेंट में केंद्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मध्य प्रदेश शासन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीव संवर्धन, विशेष रूप से बिग कैट संरक्षण के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, ये उनकी पहली भारत यात्रा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति की यह यात्रा पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के एक वर्ष के भीतर हो रही है। यह दो दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदौर में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में संरचित संवाद, अनुभव साझाकरण और सहयोगात्मक आदान प्रदान किया गया। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि, युवा उद्यमी और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। दूसरे दिन का सत्र क्रिस्टल IT पार्क में आयोजित हुआ। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक CRPF जवान शहीद हुए थे। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के कारण भारत ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल

0: भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। बैठक में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और देशभर के फील्ड अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के लिए आवास, आरोग्य और जन कल्याण के प्रभावी कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में जनजातीय लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियों को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। राज्यपाल श्री पटेल गुरुवार को पाडुना के ग्राम आमला में आयोजित जनजातीय समुदाय से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से निर्मित हो रही सड़कें नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने में सहयोगी हैं। इनसे दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों भोपाल और इंदौर उज्जैन की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी अधोसंरचना विकास के प्रयासों से लाभान्वित होंगे। इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन बन जाने से ये संपूर्ण क्षेत्र विकास के नए आयाम को स्पर्श करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों के विस्तार से समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी के चपेट में है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। खजुराहो में 47.4 डिग्री, नौगांव में 46 डिग्री और मंडला में 45.6 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पंखे और ग्रीन नेट भी लगाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल आयोजित किसानों की समस्याओं संबंधी बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि उद्वहन सिंचाई योजना से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। आगर मालवा में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से संचालित 4 कृषि रथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। पश्चिम मध्य रेलवे ने पुणे और बांद्रा टर्मिनल जाने स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को आगामी 24 मई से नियमित ट्रेन का दर्जा देने नोटिफिकेशन जारी किया है। निंडौरी में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। गुना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाजापुर कलेक्टर रिजू वाफना की अध्यक्षता में कल जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से हमेशा दूर ही रखिएगा, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन आज की सुबह में। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस सुबह की जब आप सोकर उठें, आपके आसपास कोई चिड़िया ना चहक रही हो, आपके आसपास कोई पेड़ पौधे ना हो, कोई फूल उस पर ना लगा हो, आप कॉलोनी से बाहर निकले और रोटी खिलाने के लिए कोई गाय आपको ना दिखाई दे, आसमान में उड़ता हुआ कोई पंछी ना हो। दोस्तों, क्या ऐसी सुबह या दिन आपको स्वीकार होगा? शायद नहीं, क्योंकि इस दुनिया की और इस धरती की खूबसूरती हम सबके होने से ही है। कोई जीव इस दुनिया में बगैर मतलब का नहीं है, सभी जीवों का अपना एक अलग ही महत्व है और इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। आज के दिन को हम विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैव विविधता हमारे पर्यावरण की नींव है। प्रकृति का हर छोटा बड़ा जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अगर इस कड़ी में से एक भी प्रजाति विलुप्त होती है तो पूरा का पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। ये जैव विविधता केवल वन्य प्राणियों के लिए नहीं बल्कि मानव जाति के खुद के अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति को बचाना किसी एक देश या संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को वैसी ही छोड़कर जाएं जैसी पूर्वजों ने हमें हमारे लिए छोड़ी थी। तो कीजिए अपने स्तर पर हर छोटे छोटे से प्रयास, क्योंकि ये प्रयास ही एक दिन बड़ा परिवर्तन के कारण बनते हैं।

रंग बदलता मौसम हो या लू से तपते भोपाल का हाल, सब कुछ लेकर आता है नमस्कार भोपाल। तो आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम के रंगों को। आज हम चर्चा करेंगे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की जयंती के अवसर पर, बात होगी विश्व जैव विविधता दिवस पर और आपको जानकारी देंगे भारत भवन में आयोजित कार्यक्रम संतवाणी समारोह की। पर फिलहाल कार्यक्रम में वक्त समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का।

सबसे पहली खबर में अब साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी, इनके स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी। प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल के जरिए होगी। कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चला सकेगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। और 35 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार, भोपाल में एक हफ्ते से इसी के आसपास। जेठ की भीषण गर्मी से फिलहाल राहत के आसार नहीं है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा खतरा यह है कि दिन की भीषण लू के बाद रातें भी गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। देश के 35 शहरों में गुरुवार को रात का पारा 30 डिग्री से ऊपर रहा। दिल्ली में मई के महीने में पिछले 14 वर्षों का सबसे गर्म रात दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले एक हफ्ते तक मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में भीषण हीट वेव से राहत के आसार नहीं है। अगले 2 दिन रेड अलर्ट जारी रहेगा। और 24 को सजेगी शास्त्रीय नृत्य की रंगारंग शाम। राजधानी में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सुंदरता, अनुशासन और सांस्कृतिक वैभव का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मदद फाउंडेशन और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से रिदम्स ऑफ भोपाल इंडियन क्लासिकल डांस फेस्टिवल का आयोजन 24 मई को शाम 5:30 बजे से CME हॉल JK हॉस्पिटल में किया जाएगा। इस सांस्कृतिक आयोजन में कथक सहित सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। और पुण्यवर्धन को प्रोजेक्ट ने जीता प्रथम पुरस्कार। ITI गांधीनगर में आयोजित राष्ट्रीय विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रतियोगिता में कोलार निवासी कक्षा 10वीं के छात्र पुण्यवर्धन पाटीदार ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए बेस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वोकल फॉर लोकल सत्र में पुण्यवर्धन ने शाहपुरा झील के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता सुधार के लिए स्थापित किए गए अपने फ्लोटिंग

0: आइसलैंड प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दिया। निर्णायक मंडल ने इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए। साथ ही देश के किसी प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में 7 दिन की सृजन इंटर्नशिप में सहभागिता करने का मौका भी मिला। और पहली बार निजी एजेंसियां लगाएंगी 85,000 पौधे। 3 साल बाद जितने पौधे जीवित रहेंगे नगर निगम उतनों का ही भुगतान करेगा। जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में नगर निगम शहर के अलग अलग शहरों में 85,000 पौधे लगवाएगा। इस पर 6.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निगम पहली बार ये काम प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से करा रहा है। एजेंसी चिन्हित करने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू की गई है, जो इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। बताया गया है कि पूरी कवायद लगाए जाने वाले पौधों का सर्वाइकल रेट बढ़ाने के लिए की जा रही है। दरअसल अब तक नगर निगम हर साल खुद पौधे लगाता था और खुद ही उनकी देखभाल करता था। ऐसे में बमुश्किल 50% पौधे ही जीवित बचते थे। अब निगम ने शर्त रखी है कि पौधारोपण के साथ ही एजेंसी को 3 साल तक पौधों की देखभाल भी करनी होगी। समाचार पत्रों में फिलहाल इतना ही, पर कार्यक्रम में जानकारी, मुलाकातों और मनोरंजन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ।
1: आकाशवाणी भोपाल के सारे सुनने वालों को तलत अजीज का नमस्कार, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
0: आपने अपने रेडियो सेट, मोबाइल और डीटीएच पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे पहले खास मेहमान से। दोस्तों, आज राजा राम मोहन राय जी की जयंती है, जो एक महान समाज सुधारक रहे। उनका समाज के प्रति समर्पण, निष्ठा और कर्तव्य परायणता अद्भुत थी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आज हमसे चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन मुक्ति बोध सृजन पीठ के निदेशक श्री ऋषि कुमार मिश्र।
2: राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में बंगाल में हुआ था। वे एक बहुत समृद्ध धनी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था उन्होंने। उनकी माता जी तारिणी देवी थीं और पिता का नाम रमाकांत जी था। पिता, चूंकि वो रूढ़िवादी समाज था, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे, और माता जी उनकी विशुद्ध रूप से जैसे ब्राह्मण महिलाएं होती हैं वैसे ही वो थीं। लेकिन जैसे जैसे उनका विकास बौद्धिक रूप से हुआ तो वे एक विद्रोही स्वभाव के, जो रूढ़िवादिता थी। क्या होता है कि समाज जब बहुत दिन तक जिंदा रहता है तो उसमें कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ ऐसी रूढ़ियाँ आ जाती हैं जो पहले कभी समाज के विकास के लिए ही होती थी, समाज का सहयोग करती थी, लेकिन बाद में वे समाज के विकास में बाधक हो जाती। तो ये जो धार्मिक रूढ़िवादिता थी, यह राम मोहन राय जी को पसंद नहीं आई, और उन्होंने, कहना चाहिए कि एक विद्रोह का रुख अपनाया, कि जो मूर्ति पूजा थी, कर्मकांड था, इससे उनका विद्रोह प्रारंभ हुआ। और इसका सबसे अधिक विरोध उनके पिता ने ही किया। पिता उनको समझते थे कि ये नास्तिक है, और उनके साथ डांट फटकार भी होती थी। वे स्वतंत्र विचारों के थे और तर्क बहुत करते थे। एक पिता कहते थे, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है ये बच्चा। तो इस तरह से एक विद्रोही स्वभाव लेकर के वे आगे बढ़े। थोड़े जब युवा हुए, 14 से 15 वर्ष की उम्र में हुए, तो बौद्धिक विकास उनका हो गया। उन्होंने समाज के संपर्क में जब आए तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ समाज में, धार्मिक रूढ़िवादिता तो था ही और सामाजिक कुरीतियाँ भी थीं, जिनमें सती प्रथा सबसे अधिक एक हृदय विदारक और एक निर्दयी एक प्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु होने के उपरांत उसकी पत्नी को भी शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था। और इसका प्रत्यक्ष अनुभव राम मोहन राय जी को हुआ। उनके भाई की मृत्यु हुई तो उनकी भाभी को शव के साथ जब जलाया गया तो उनका हृदय बड़ा द्रवित हुआ, और उन्होंने भरसक प्रयास किया कि इसको रोक सकें, लेकिन किशोर राम मोहन राय उसको रोक न सके। उसी समय उन्होंने संकल्प ले लिया, उनकी चिता के समय ही, कि जब तक मैं इस प्रथा को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं, और बाद में उन्होंने इस कार्य को पूरा किया।
0: बहुत बड़ा जिम्मा उन्होंने उठाया था, किस किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा, और आज भी जब युवाओं के सामने छोटी छोटी सी चुनौतियाँ जब आती हैं तो वो उनके सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं, तो किस तरह की सीख लेने की ज़रूरत है?
2: सीख लेने की, ऐसे अगर राम मोहन राय जी के समय में देखे, आज तो स्थितियां बहुत अनुकूल हैं, आज का समाज तो बहुत अधिक स्वतंत्र हो चुका है, बहुत उदार हो चुका है, नई शिक्षा पद्धति आ गई है। लेकिन उस समय की बात करें, यानी 18वीं शताब्दी

0: का उत्तरार्ध जो था उस समय जो विद्रोह का रुख अपनाना समाज में और उस अपने संकल्प को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल कार्य होता था। उन्होंने जो अन्य कुरीतियां थी, केवल सती प्रथा ही नहीं, बाल विवाह की प्रथाएं थी, जातिवाद था, मूर्ति पूजा में लोग लगे रहते थे, कर्म कांडों के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा लोगों की होती थी, इसके अलावा पर्दा प्रथा होती थी, बाल विवाह की प्रथा होती थी और बहुविवाह प्रथा भी होती थी। तो ये सारी कुरीतियां थी जो समाज में फैली हुई थी। इन सब से एक साथ लड़ना और लड़ने के लिए एक सिस्टमेटिक रुख अपनाना, व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना। जैसे उन्होंने सबसे पहले स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए, स्त्रियों को बंधन से मुक्त करने के लिए, इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया। तो जिन युवकों में बल होता है, जो कुछ करना चाहते हैं वे कर तो पाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी तरह का आंदोलन, किसी तरह का संकल्प पूरा करने के लिए अगर व्यवस्थित तरीका नहीं अपनाया जाए तो वो पूरा नहीं होता है। तो देखना ये चाहिए, उनकी जो कुछ राममोहन राय जी ने किया उसमें उन्होंने एक एक स्तर पर सिस्टमेटिक रूप से और व्यवस्थित रूप से कार्य किया, जिससे उन्हें अपने सारे प्रयत्नों में सफलता मिली।
1: राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? और जहाँ तक हमने उनके बारे में पढ़ा, उन्हें काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान था।
0: हाँ, उनको भाषाओं में संस्कृत का तो ज्ञान था ही, उर्दू, फारसी और अरबी का भी ज्ञान था, पर्शियन का भी ज्ञान था, और बंगाली, चूंकि बंगाली समाज से ही आते थे, मातृभाषा थी, तो बंगाली का उनको ज्ञान था ही। वे चूंकि एकेश्वरवाद, जो उनका ब्रह्म समाज था, वो एकेश्वरवाद पर आधारित था, और एकेश्वरवाद की जो प्रेरणा है उनको सर्वप्रथम उपनिषदों से मिली, एको ब्रह्म तृतीयो नास्ति, एक ब्रह्म, एक विश्व के लिए एक ब्रह्म। तो बाद में इसकी पुष्टि सूफी जो दर्शन है उससे हुई उनकी। यहाँ जैसे कहते हैं ना कि एक सूत्र कहा जाता है, आनो भद्राः कर्तव्यो यन्तु विश्वतः, यानी बाहर के सभी कल्याणकारी विचारों को, शुभ विचारों को अपने पास आने दीजिए। तो एक खिड़की खुल गई थी और ये खिड़की खुली थी बंगाल के माध्यम से। सभी जानते हैं कि जो पश्चिम का प्रवेश भारत में हुआ है या अंग्रेजी का जो प्रवेश भारत में हुआ है, वो बंगाल की खिड़की से ही हुआ है।
1: राजा राम मोहन राय जी के विषय में विस्तार से चर्चा करने के लिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हमारे युवाओं तक पहुंचाने के लिए पूरा आकाशवाणी परिवार, पूरा देश आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस विषय को उठाया। ये हमारे आधुनिक भारत के निर्माता के साथ साथ इनको महानायक, सुपर हीरो की श्रेणी में भी रखा जाना चाहिए। ऐसे महापुरुषों का समय समय पर स्मरण करना ही चाहिए हमको। इतिहास की धूल इन पर जमने न पाए, इसके लिए आपने प्रयास किया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आकाशवाणी का साधुवाद करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे समाज सुधारक श्री राजा राम मोहन राय जी की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन मुक्ति बोध सृजन पीठ के निदेशक श्री ऋषि कुमार मिश्र जी को। दोस्तों, इस देश में ऐसे कई व्यक्तित्वों ने जन्म लिया जो अपने कामों की वजह से अमर हो गए। उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता था। वे एक सच्चे देशभक्त थे। युवाओं को उनके यही देश प्रेम से सीखने की और प्रेरणा लेने की हमेशा ज़रूरत रहेगी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, और इस आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ चल रही हूँ मैं शिखा जैन। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हुआ है हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों आज विश्व जैव विविधता दिवस है। आज के दिन के महत्व के विषय में हमसे चर्चा कर रही हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की पर्यावरण एवं सरोवर विज्ञान विभाग की HOD डॉक्टर अभिलाषा भावसार। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में।
1: धन्यवाद।
0: आपका नाम और डिग्री?
1: प्रेम शंकर शुक्ल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भारत भवन।
0: सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत भवन जो है अपने आयोजनों की श्रृंखला में कितने आयाम को जोड़ता है।
1: दरअसल यह पूरा जो संतवाणी समारोह है भक्ति संगीत पर केंद्रित है। आप सब जानते ही हैं कि भारत में भक्ति संगीत की अर्थात भक्ति काल का बहुत प्रभाव रहा है और है भी आजकल। आज तक हमारी आध्यात्मिक चेतना में संतों ने उजाला फैलाया है। यदि संत न होते तो शायद हमारा भारत आज जैसा है वैसा न होता। हमारी संस्कृति के आंगन में संतों की वाणी का ही अंजोर है, उजाला है, और उनकी वाणी लगातार हमें बेहतर जीवन जीने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए प्रेरणा परक भी बनती है और संबल भी बनती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत भवन 3 दिन का संतवाणी समारोह आयोजित करता रहा है। इस बार भी जैसा कि आपने बताया 22 से 24 मई तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से संतवाणी गायन का समारोह आयोजित है। मैंने अभी कहा ही कि यह जो संतों की वाणी है अर्थात हमारे भक्ति पद जो हैं, भक्ति के पद जो हैं, उन्हीं का गायन गायक कलाकार करते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी आध्यात्मिक चेतना लगातार अपनी ऊर्जा उष्मा बनाए रखे और हमारा जीवन आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत हो, उसको शांति मिले, जूझने की क्षमता मिले। जैसी परिस्थितियां हैं उसमें व्यक्ति जूझ सके, उसकी जिजीविषा जीवटता बड़ी हो सके, महत्वपूर्ण हो सके, इसीलिए हम लोग भक्ति पदों के गायन का यह कार्यक्रम करते हैं। इसमें जाहिर है कि भक्ति का, प्रेम का, करुणा का एक वातावरण विकसित हो आज के उन्माद और हिंसा से भरे समय में, यह लक्ष्य तो है ही।
0: जी सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने बताया कि संतों की वाणी या संतों के विचार लोगों तक पहुँचे, तो जानना चाहेंगे इस वाणी को लोगों तक पहुँचाने के लिए कौन कौन से कलाकार इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं इन 3 दिवस के दौरान?
1: ये 6 कलाकार हैं अर्थात 6 संगीत सभाएं होंगी 3 दिन में। प्रतिदिन 2 संगीत सभाएं हो रही हैं। हम लोग, हमारे भोपाल की ही कलाकार हैं पूर्वी सप्रे, उनके गायन से इसको आरंभ कर रहे हैं। फिर उसी दिन कुमार गंधर्व की सुपुत्री हैं, देश की बड़ी गायिका हैं, कलापनी कोमकली, उनका गायन होगा। फिर दूसरे दिन आप सबने देखा होगा कि जो शंकराचार्य के श्लोक हैं, जो स्तुतियाँ हैं शंकराचार्य ने लिखी हैं, आचार्य शंकर ने, उनके गायन के लिए इस समय बहुत प्रसिद्ध हैं माधवी मधुकर झा, उनका गायन होगा। और उसी दिन मंजूषा पाटिल हैं जो अभंग गायन के लिए पूरे देश में बहुत चर्चित हैं, अभंग गायन के लिए उनका देश में बहुत अग्रणी स्थान है। तो दूसरे दिन माधवी मधुकर झा और मंजूषा पाटिल का गायन, भक्त संगीत का गायन।

0: गायन है, फिर समापन हो रहा है, आरती अंकलीकर जी के गायन से समापन होगा। उनके पहले हमारे भोपाल की गायिका हैं अनुषा शर्मा, उनका गायन होगा। आरती अंकलीकर जी के बारे में जैसा कि मैंने अभी कहा, वो बहुत बड़ी गायिका हैं देश की, चाहे क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में आप ले लें या अभंग के क्षेत्र में, उनका गायन बहुत आदर से सुना जाता है और जो गायक कलाकार हैं देश में उनमें उनकी जगह उच्च कोटि की है। तो आप पाएंगे कि पूर्वी सप्रे से यह गायन की सभा शुरू होगी और आरती अंकलीकर टिकेकर के गायन से, भक्तिपद गायन से ये संपन्न हो जाएगी। 6 सभाएँ होंगी 3 दिन में, प्रतिदिन शाम 7 बजे से होंगी। कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। सभी संगीत प्रेमी, भक्ति प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी आएँ, ऐसा भारत भवन सबसे निवेदन करता है। किसी तरह का शुल्क नहीं है, सब लोग भारत भवन आएँ। कलाकारों का, कला रसिकों का आदर है, सम्मान है, आमंत्रण है
1: जी। सर, इस तरह के आयोजन आज के युग में जब हम बात करते हैं तो प्रासंगिक क्यों हो जाते हैं? जब लोगों का मन इतना अशांत है, जब भागदौड़ भरी इतनी लाइफ है, तो इस तरह के गायन किस तरह से उनके मन को या उनके कर्मों को जो है वो शांति प्रदान करते हैं?
0: हमने पहले ही कहा कि यह हिंसा, उन्माद और भागदौड़ का समय है। ऐसे समय में भक्ति के गायन का कार्यक्रम रखना, आध्यात्मिक चेतना को अपने भीतर, अपने हृदय में एक जगह देना है, सम्मानजनक जगह है। हम लोग बहुत दौड़ भाग के लोग हैं, शहरों का जीवन हो, चाहे गांव का जीवन हो, कस्बों का जीवन हो, आज आप सब देखते ही हैं कि दौड़ भाग का जीवन है। ऐसे दौड़ भाग के जीवन में ये जो कवियों की वाणी है हमारी आत्मा को कोमल तो करती ही है, अपनी करुणा की तरलता और उजास से भी पूरित करती है। भक्ति भारत के हर व्यक्ति की धड़कन है, हमारी रंगों में, हमारे खून में आध्यात्मिक चेतना है। ऐसे में बिना आध्यात्मिकता के तो हम रह ही नहीं सकते। ऐसे में संतवाणी समारोह जो भारत भवन लगभग हर साल आयोजित करता है, मुझे लगता है उसकी प्रासंगिकता अपने आप में ही है कि जब भी हम कलाकारों को बुलाते हैं, वे शहर से आते हैं, उनके आने से हमें संबल मिलता है, कला रसिक बड़ी संख्या में आते हैं, उनका आना भी हमें मजबूती देता है, संबल देता है। तो आज तो ज़रूरत है ऐसे ही भागदौड़ के समय में, उन्माद के समय में ऐसे आयोजन हों, इसीलिए रखा गया है और लोग उसका स्वागत करते हैं, आते हैं। पुनः मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, प्रतिदिन शाम 7 बजे से 22 से लेकर 24 मई 2026 ये तिथि और समय है, आप सब आएँ। आकाशवाणी के लिए भी धन्यवाद, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है आकाशवाणी उनको बड़े पैमाने पर सुदूर अंचलों में, मध्य प्रदेश देश के अंचलों में फैलाता है, इसलिए भारत भवन आकाशवाणी के प्रति भी, आप सबके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता है।
1: जी सर, हमारा भारत भवन इसी तरह से संतों की वाणी को, कलाकारों की वाणी को लोगों तक पहुंचाता रहे और हमारे देश की संस्कृति इसी तरह दूर सुदूर देशों विदेशों तक फैलती रहे, और हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और इस तरह के आयोजन को आमंत्रित करने के लिए आकाशवाणी परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है।
0: मैं भी पुनः धन्यवाद देता हूँ, आकाशवाणी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों कार्यक्रम में वक्त हुआ है हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों आज विश्व जैव विविधता दिवस है और आज के दिन के महत्व के विषय में हमसे चर्चा कर रही हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की पर्यावरण एवं सरोवर विज्ञान विभाग की HOD डॉक्टर अभिलाषा भावसार।
1: एक्चुअली जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज जो है आज वैश्विक संकट बन चुका है। और इसमें होता क्या है कि जो आपका तापमान है उसमें वृद्धि होती है, जो वर्षा चक्र में अस्थिरता आती है जो हम आजकल देख रहे हैं, और कभी कहीं बहुत ज़्यादा सूखा होगा, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आएंगी। इस तरह की जो पर्यावरण संबंधित समस्याएँ हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण आ रही हैं। अब यदि हम बात करें इनके समाधान की, तो इनके समाधान के लिए बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सालों से चलाई जा रही हैं, परंतु फिर भी हमें पूर्णतः इसमें सफलता तो नहीं मिल रही है। और इसमें सफलता के लिए कहीं ना कहीं जो कुंजी है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी हुई है मिशन लाइफ के तहत, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट या फिर पर्यावरण अनुकूल हमारा जो जीवन शैली है उसके लिए। ये जो मिशन लाइफ है ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 अक्टूबर 2022 को लॉन्च करी थी स्कीम, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी मान्य है, वो भी इसको फॉलो करते हैं। और ये जो जीवन शैली है से संबंधित एक समाधान है जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए, जिसमें 7 इसके प्रमुख घटक हैं। छोटी छोटी हमारी दैनिक जीवनचर्या की आदतें हैं जिनको हमें सुधारना होगा। और बेसिकली जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था इस मिशन लाइफ के पीछे वो जन भागीदारी का था, कि हर व्यक्ति, आप और मैं या हमारे परिवार के सदस्य या हमारे ऑफिस के जो लोग हैं या हर सिटीजन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी दैनिक जीवन शैली में छोटे छोटे चेंजेस कर एक बड़ा बदलाव लाए जो कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वो ऐसे निभाएगा कि इस मिशन लाइफ के 7 प्रमुख घटक हैं, जो हमें बोलते हैं सही तरीके से एनर्जी का उपयोग करना और पानी बचाना, ई वेस्ट को कम करना और खाने को वेस्ट कम करना। ये जो हमारी दैनिक दिनचर्या की हैबिट्स हैं उसको यदि हम बदलाव करेंगे तो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन, जिसको हम सतत समाधान कहते हैं क्लाइमेट चेंज का, आ पाएगा। एक सॉल्यूशन तो ये है मिशन लाइफ। और यदि हम थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट में यदि हम जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन हो क्या सकता है, तो उसके लिए शिखा जी मैं आपको ये बताऊंगी कि वेटलैंड्स या फिर आर्द्र भूमि या सरल शब्दों में नम भूमि जो होती है वो इसका सॉल्यूशन है। वो इसका सॉल्यूशन इस तरह है कि जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, नदी तालाब उनमें कुछ आते हैं, उनमें पेड़ों से भी, जंगल से कम दुगना कार्बन स्टोर करने की, उसको सिक्वेस्टर करने की, उसको नलिफाई करने की कैपेसिटी होती है। तो हम अधिकतर फॉरेस्ट की तरफ फोकस करते हैं कि नो डाउट वो तो करता ही करता है, कार्बन को स्टोर करता है और कंट्रोल करता है कार्बन का जो इमिशन है, बट वेटलैंड्स जो है लगभग डबल उससे ज्यादा कार्बन को, इमिशन को रोकते हैं। तो वेटलैंड्स जो है वो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन या फिर एक टर्म आजकल लाइए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, जिसमें हम प्रकृति से ही, प्रकृति से जुड़ी हुई समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। हालांकि समस्याएं जो है वो मानव के द्वारा निर्मित है, बस उसका समाधान हम प्रकृति की तरफ देखते हैं। तो वो टर्म है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर भी हम वेटलैंड्स के थ्रू क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो वेटलैंड्स होते हैं इनमें कार्बन स्टोर करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, परंतु अर्बनाइजेशन या शहरीकरण के कारण या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या फिर जो मानव का जो इंटरफ्रेंस है नेचर में, उसके कारण क्या हो रहा है, ये वेटलैंड्स हमारे नष्ट हो रहे हैं। और क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कार्बन और मिथेन जो है इनमें स्टोर होता है, जब ये नष्ट होते हैं तो वो वातावरण में इमिट होती है। तो इनको नष्ट से हमें रोकना है, और जो नष्ट हो चुके हैं या नष्ट होने की कगार पर है उनको वेटलैंड रेस्टोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमें इनको रेस्टोर करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन को स्टोर कर पाए, उसके इमिशन को कंट्रोल कर पाए।
0: तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है मैम, क्योंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं और आपका जो है रिवर हेल्थ के ऊपर एक लंबी स्टडी रही है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं या छोटे छोटे से टिप्स की बात करूं जो हम सब सहयोग कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे?
1: जी, वेटलैंड या रिवर इकोलॉजी की हम बात करें या वेटलैंड को एज ए क्लाइमेट चेंज

0: के इमिशन को कंट्रोल कर पाएं।
1: तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है मैम, क्योंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं और आपका जो है रिवर हेल्थ के ऊपर एक लंबी स्टडी रही है, तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं या छोटे छोटे से टिप्स की बात करूं जो हम सब सहयोग कर सकते हैं तो वो क्या होंगे?
0: जी, वेटलैंड या रिवर इकोलॉजी की हम बात करें या वेटलैंड को एज ए क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमें वेटलैंड्स को बचाना है। और हम लोग रिवर पर या लेक्स, जितने भी भोपाल या मध्य प्रदेश के मेजर लेक्स हैं भोपाल के आसपास हैं, उन पर हम स्टडी करते रहते हैं। तो बारना रिवर या बारना रिजर्वायर का आपने नाम सुना होगा, जो एक नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, उस पर हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग लगभग 15 साल से भी ज़्यादा वहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे सामने फैक्ट्स निकल कर आए वो ये था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ को नुकसान पहुँचा रही हैं। तो वेटलैंड्स को भी यदि हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें एग्रीकल्चर जो है वो हमारा, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमें यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इनऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर को जो हम यूज करते हैं नदियों में या तालाबों में या नम भूमियों में उसके आसपास, वो हमें रोकना होगा, क्योंकि वो हमारे वेटलैंड्स को पोल्यूट करती है, उनकी जो लाइफ साइकिल है उसको कम करती है, एक चीज। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बोला, एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस काफी ज्यादा हो चुका है। तो किसी भी वेटलैंड के कैचमेंट एरिया में जिस तरह की भी मानव निर्मित गतिविधियां होती है, वही उस वेटलैंड की हेल्थ को डिफाइन करती है, उसको दर्शाती है और उसकी लंबी लाइफ को निश्चित करती है। तो हमें कम से कम उसके कैचमेंट एरिया में अलग अलग तरह की मानव निर्मित गतिविधियां, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, या फिर आप बहुत सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि हम कभी कभी देखते हैं कपड़े भी धोते हैं लोकल लोग वहां पर, तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं ये हमें रोकना पड़ेगा, जिससे कि हमारे वेटलैंड्स की लाइफ जो है वो बड़ी हो जाए और उनकी हेल्थ बनी रहे। वो बने रहेंगे तो कार्बन स्टोर करते रहेंगे, कार्बन इमिशन को कंट्रोल करते रहेंगे। वेटलैंड्स का एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो होता है, या वेटलैंड्स जिस चीज से जाने जाते हैं, वो होती है उसकी जैव विविधता। और आपको मैं बताऊं, वेटलैंड्स पूरे जो भी अवेलेबल जैव विविधता है विश्व में, उसमें अलग अलग इकोसिस्टम में, उसमें से 40% जो बायोडाइवर्सिटी है वो वेटलैंड्स में मिलती है। तो यदि किसी वेटलैंड में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी या बायोडाइवर्सिटी को हमें बनाए रखना है, तो निश्चित तौर पर हमें वहां पर रहने वाली जैव विविधता के खाने और रहने, जिसको फूड और हैबिटेट बोलते हैं, उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। यदि हम उसको बनाए रखते हैं तो नेचुरली वहां पर बायोडाइवर्सिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी तो वेटलैंड्स हेल्थी होंगे, वेटलैंड्स हेल्थी होंगे तो उनका जो कार्बन स्टोरिंग का जो प्रोसेस, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो नेचुरली चलती रहेगी। मेरा सबसे निवेदन है कि हम पर्यावरण को सम्मान करना सीखें, हम नेचर को रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि जब हम नेचर का रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तो हमारा जो उसके प्रति कर्तव्य है, जो फर्ज है, उसको हम महसूस कर पाएंगे, उसको हम जी पाएंगे और अपने पर्यावरण के बहुत से कंपोनेंट्स, ना कि सिर्फ वेटलैंड्स, प्रकृति का हर एक कंपोनेंट को हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे और उसको वैल्यू करेंगे, और इस तरह से हम एक लंबे जो जीवन है वो पर्यावरण को दे पाएंगे। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की पर्यावरण एवं सरोवर विज्ञान विभाग की HOD डॉक्टर अभिलाषा भावसार को। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के एक नए अंक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।
3: बगल बगल बगल बगल

0: ये अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध

0: गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

0: है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नीयारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक

0: में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Shwani presents Morning News. Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy.

श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है, इसको मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2000 में की गई। इसकी जो इसका मनाने का उद्देश्य है वो जैव विविधता हमारे अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमें भोजन, स्वच्छ हवा, पानी, औषधियाँ और एक स्थिर जलवायु जो है वो प्रदान करती है। तो पृथ्वी पर और हमारे जीवन में जैव विविधता का होना बहुत ज़रूरी है।

0: श्रोताओ, प्रकृति ने पृथ्वी को अनेक तरह के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और बहुत ही छोटे छोटे जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कह सकते हैं से सजाया है। इन सभी जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। जी हाँ श्रोताओ, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैव विविधता जो है वो पृथ्वी पर जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, ये सब मिलकर जो हैं वो जैव विविधता बनाते हैं। कहा जाता है पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर जैव विविधता समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और शायद संभव ही ना रहे। तो जैव विविधता जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारा जो पर्यावरण है वो पशु पक्षियों पेड़ पौधों से मिलकर ही बना है, और हमें पेड़ पौधों का ध्यान बहुत रखना चाहिए, उसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। श्रोताओं, दिन ब दिन जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास हरियाली का ध्यान रखना चाहिए। बारिश का मौसम जब आए तब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हमें लगाने चाहिए, अपने आसपास हरियाली को बचाने के प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें ताज़ी हवा मिले, और जब हमें ताज़ी हवा मिलेगी उससे जो है हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा मिलेगी उससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर बनेगा। तो याद रखें कि अपने आसपास अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को भी ज़रूर लगाएं और उनका जो है वो ध्यान रखें, जिससे ताज़ी ताज़ी हवा हमें मिलती रहे।
5: अरे

श्रोता, जैसे कि हमने बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वृक्षारोपण करना चाहिए और वन्य जीवों की और भी जो जीव हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की शिक्षा और जागरूकता भी बहुत बड़ा योगदान देती है जो हमारी जैव विविधता है उसको बचाने में। हमें बच्चों को भी इस बारे में बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से जो है ये जैव विविधता हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें बताएं कि वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है, इनकी सुरक्षा जो है जीवों की क्यों ज़रूरी है और प्रदूषण जो है उसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसके बारे में हमें बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए और जागरूक करना चाहिए, जिससे कि हमारा आज और कल बेहतर बने।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में अभी छोटा सा अंतराल लेते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है इस घंटे की खास खबरों का। तो पहले सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे, ये उनकी पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने से संबंधित दृष्टिकोणों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के प्रयास फलीभूत होने लगे हैं। समन्वित प्रयासों से प्रदेश में प्रतिदिन 9.67 लाख किलोग्राम औसत दुग्ध संकलन की उपलब्धि दर्ज हुई है। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबर।
0: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोतो, यहाँ बचपन में पढ़ी किताबों की एक कविता याद आ रही है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जी हाँ श्रोताओ, और आगे पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। श्रोताओ, श्रीनाथ सिंह की ये जो रचना है, कविताएं हैं, ये वाकई इतनी सार्थक हैं और हमें जीने का जो है वो ढंग सिखाती हैं और बताती हैं कि किस तरह से हमें अपनी प्रकृति को संभालना है और संवारना है, और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर सीखना चाहें और बहुत गौर से ध्यान से देखें तो प्रकृति की एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमें कुछ ज्ञान दे रही है, कुछ हमें सिखा रही है, अच्छा सबक हमें जीने का दे रही है।

श्रोताओ, तो हम तो यही कहेंगे कि ज़िंदगी बदलती रहती है, हर पल कुछ नया होता है और हर मुश्किल का हल होता है। जी हाँ, ज़िंदगी को खुश होकर जीना है और तभी हमें ज़िंदगी का मज़ा आता है। और खुश हम तभी रहेंगे जब हम अपने आसपास, अपने पर्यावरण और जैव विविधता का ख्याल भी रखेंगे।

0: तो श्रोताओ, ये था आज का हमारा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
1: प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

मेरा अनुभव है कि हर न्यायोचित संघर्ष पर गुणोत्तर वृद्धि का नियम लागू होता है, लेकिन सत्याग्रह के मामले में तो ये नियम स्वयं सिद्ध है। जैसे जैसे सत्याग्रह संघर्ष प्रगति करता है, अन्य अनेक तत्व उसको बल प्रदान करने लगते हैं और उससे प्राप्त

परिणामों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। ये वस्तुतः अपरिहार्य है और सत्याग्रह के प्रथम सिद्धांत के साथ ही जुड़ी है। कारण ये है कि सत्याग्रह में न्यूनतम ही अधिकतम भी है, और चूंकि इस न्यूनतम में और ह्रास संभव नहीं है, इसलिए सत्याग्रह में पीछे हटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उसकी एक ही गति संभव है, वो है प्रगति। अन्य प्रकार के संघर्षों में मांग को थोड़ा ऊंचा करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में उसमें कुछ कमी करने की गुंजाइश रहे। इसलिए उन सब में गुणोत्तर वृद्धि का नियम निरपवाद रूप से लागू नहीं होता। मेरी दृष्टि में सत्याग्रह दुनिया के सर्वाधिक सक्रिय बलों में से एक है। ये सूर्य की भांति है जो हर रोज बिना नागा पृथ्वी के ऊपर चमकता है। अगर हम समझ पाएं तो सत्याग्रह करोड़ों सूर्यों से भी अत्यधिक तेजस्वी है। ये जीवन और प्रकाश तथा शांति एवं सुख का प्रसार करता है। अगर एक सत्याग्रही भी अंत तक डटा रहे तो विजय निश्चित है। मारते हुए मरने वाले लाखों आदमियों के बलिदान के मुकाबले एक निर्दोष व्यक्ति का आत्म बलिदान लाखों गुना ज्यादा असर पैदा करता है। निर्दोष का स्वेच्छा बलिदान उद्धत क्रूरता का ईश्वर अथवा मनुष्य द्वारा अभी तक सोचा गया सबसे शक्तिशाली प्रतिकार है। मेरी ये धारणा रही है कि अगर एक आदमी भी पूरी तरह अहिंसक रहे तो वो बड़ी से बड़ी अग्नि का शमन कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र के इस युग में ये आवश्यक है कि अभीष्ट परिणाम लोगों के सामूहिक प्रयास से प्राप्त किए जाएं। किसी एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के प्रयास से ध्येय की प्राप्ति अच्छी बात जरूर है, लेकिन उससे समुदाय को अपनी सामूहिक शक्ति का बोध कभी नहीं हो सकता। मैं अकेला चलने में विश्वास करता हूं। मैं अकेला ही इस दुनिया में आया, अकेला ही मौत के साये की घाटी में चला हूं, और समय आने पर अकेला ही ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं निपट अकेला हूं, तो भी सत्याग्रह छेड़ने की मुझ में पर्याप्त सामर्थ्य है। मैंने पहले भी ऐसा किया है।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी।
1: गांधी चर्चा अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

दिल वाली दुल्हनियाँ ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और कुमार सानू की, गीतकार थे आनंद बख्शी, तज बनाई थी जतिन ललित ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल सुरों में अभी आपने सुना तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नगमा। गीतकार थे हजरत जयपुरी, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

दिल वाले फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ें अरिजीत सिंह और एंतरा मित्रा की हैं। अमिताभ भट्टाचार्य का गीत है और प्रीतम ने इसकी तर्ज बनाई।

आइए आपको सुनवाते हैं अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में चलते चलते फिल्म का नगमा। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में समीर के बोलों को। तर्ज बनाए जितेंद्र ललित ने और फिल्म का नाम सिलसिला है प्यार का।

संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म का नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, एस एच बिहारी की बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिले में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ गया है। लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान भी लगभग 28 डिग्री तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार जिले में वर्ष 2005 में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जाता है। भीषण गर्मी के बीच छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी है। वन विभाग के अनुसार पिछले एक सप्ताह में सैटेलाइट के माध्यम से 1200 से अधिक फायर अलर्ट मिले, जिनमें 705 वन क्षेत्रों और 515 वन क्षेत्र के बाहर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वन विभाग के उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि आग से लगभग 338 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 132 लोगों पर वन अपराध दर्ज किए गए हैं। विभाग ने बताया कि जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण महुआ संग्रहण के दौरान लगाई जाने वाली आग, नरवाई जलाना और लापरवाही से फेंकी गई जलती बीड़ी सिगरेट है। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में गेहूं उपार्जन, खाद वितरण और पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को ई टोकन और उपार्जन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद की उपलब्धता की जानकारी व्यापक रूप से किसानों तक पहुँचाई जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 8,330 किसानों से 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने और शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के पर्यटक आने वाले एक माह तक बहुत कम दामों में पर्यटन ग्रामों में बने होम स्टे में रहकर ग्रामीण पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार ने बताया कि जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर पर्यटकों के लिए ग्रीष्मकालीन ऑफर दिया है। 20 मई से 20 जून तक पर्यटक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। छिंदवाड़ा वन वृत्त में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य तेजी से जारी है। अधिक तापमान के कारण इस बार पत्ते जल्दी तैयार हुए हैं, जिससे संग्रहण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रह

0: चरण पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्पेन की एक टीम ने छिंदवाड़ा के पर्यटन गांव में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की। स्पेन से आई टीम ने तामिया, सावरवानी, धूसावानी और चिमटीपुर में 3 दिनों तक ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति, पर्यटन गतिविधियों और पातालकोट की पारंपरिक आदिवासी विवाह रस्मों को कैमरे में कैद किया। ये शूटिंग रूरल टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड नामक अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन सीरीज के लिए की गई है, जिसका प्रसारण लगभग 80 यूरोपीय देशों में किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के ग्रामीण और इको टूरिज्म को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। पिछले दिनों सांसद विवेक वंटी साहू और अन्य जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी विकासखंडों में अगले 10 दिनों तक कृषि रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को खरीफ फसलों की तैयारी, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती, विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर शहर में अमानक प्लास्टिक डिस्पोजल और पॉलिथीन के खिलाफ संयुक्त छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम द्वारा की गई। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चार फाटक क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान चार फाटक और चौराईकुंडा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित अंडरब्रिज और सौसर लोधीखेड़ा मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। जिले में संचालित आंगनबाड़ियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। 1 से 15 जून तक जिले की सभी आंगनबाड़ी बंद रहेंगी। इस दौरान निर्धारित टीकाकरण और मासिक वजन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के 211 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। ये स्वीकृति केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों के बाद प्रदान की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला संसार।

0: समय और सम्मान दोनों बहुत कीमती होते हैं, एक भी चला जाए तो लौटता नहीं। नमस्कार सखियों, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे। आप सभी सखियों का स्वागत करती हूं आज के फ़ोन इन कार्यक्रम में। आओ सखी बातें करें। सखियों, आज का दिन यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, साथ ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की लुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना। सखियों, जैव विविधता का बहुत महत्व है। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण और भंडारण, प्रदूषण से लड़ना, जलवायु को स्थिर करना, जल संसाधनों की रक्षा करना, मिट्टी का निर्माण और संरक्षण करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। आप सभी सखियां जानती ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम सखियों से बातें करेंगे और उनकी पसंद के गीत भी सुनवाएंगे। फ़ोन लगाने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 0755-2660-902। इस नंबर पर फ़ोन लगाइए और अपनी पसंद का गीत भी सुनिए। एक सखी हमसे जुड़ रही है।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: हेलो, नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ और मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: अच्छा अच्छा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मूवी का नाम है होगी प्यार की जीत।
0: होगी प्यार की जीत, और
1: कौन सा गाना? गाने के बोले लाखों आशिक मर जाते हैं।
0: लाखों आशिक मर जाते हैं, चलिए ठीक ठीक है, हम आपका गीत
1: और ये सॉन्ग आपको डेडिकेट और नंदनी को रहेगा डेडिकेट।
0: अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है। आप श्रोताओं से ही तो हम लोगों का उत्साह वर्धन होता है। चलिए आपसे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी जब तक हम गाना ढूंढते हैं।

0: आप जानते ही हैं कि आज जैव विविधता दिवस है, तो आप बताइए आपकी पर्यावरण को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए कौन सी आपने संकल्प लिए हैं या क्या करती हैं आप?
1: जी मैम, देखिए मैं तो ज्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक वो पेड़ पौधे अपने घर में लगाए जाए
0: जी,
1: बचाव मतलब हम लोगों को भी करना चाहिए।
0: हाँ हाँ
1: जी, बस इतना ही। अच्छा, मुझे पता था तो बता दिया।
0: नहीं नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जल को बचाने के लिए भी बहुत सारे काम हम महिलाएं किचन में रहते हुए कर सकते हैं। मैं एक आइडिया देती हूँ जो मैं करती भी हूँ। जैसे हम सब्जियाँ धोते हैं, दाल चावल धोते हैं खाना बनाते समय, तो वो जो पानी होता है ना, जनरली हम सिंक में बहा देते हैं। अगर आप वहाँ पर एक कोई डब्बा बड़ा सा बॉक्स रख लेंगी, बाल्टी जैसा, तो उसमें पानी इकट्ठा करिए और फिर पौधों में डाल दीजिए या किसी जीव जंतु को पीने के लिए रख दीजिए, तो बहुत अच्छे से हम पानी की सेविंग कर सकते हैं। नहीं, कैसा आइडिया है? हेलो, आप सुन पा रही हैं?
1: जी जी आ रही है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए
1: हम।
0: हाँ जी
1: हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे कि कोई भी छोटे बड़े जीव और पौधे रहते हैं
0: जी,
1: तो
0: जी
1: उनका भी होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: जी,
0: सही
1: जी।
0: अभी देखिए बरसात का मौसम आ रहा है, तो हम वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। पौधे बहुत आराम से लग जाते हैं उस मौसम में, है ना? तो हम उम्मीद करते हैं आप भी करेंगी और आप अपनी सखियों को भी इस तरीके से प्रेरित करेंगी। चलिए रानू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। आप सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, आपका कार्यक्रम में
1: नमस्ते।
0: बहुत
1: मैं
0: बहुत स्वागत है।
1: भावना यादव बोल रही हूँ, काली चौक सिवनी मध्य प्रदेश से। थैंक
0: अच्छा भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप कौन सा गीत सुनना
1: यू।
0: चाहेंगे?
1: रामलखन का बंटू
0: अच्छा कौन सा गीत?
1: का फोर। जी
0: 1 2 का 4। अच्छा ठीक है, हम आपकी पसंद का गीत ढूंढते हैं, तब तक आपसे थोड़ा बातें करते हैं। ये
1: जी
0: बताइए भावना जी, आज है जैव विविधता दिवस, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पर्यावरण के लिए या जल को बचाने के लिए क्या प्रयास करती हैं?
1: मेरा तो यही मानना है कि हर घर में पेड़ लगे हैं,
0: जी
1: और मेरे
0: जी
1: यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं।
0: अच्छा, बहुत
1: हाँ,
0: बढ़िया
1: हर साल एक पेड़ लगाते हैं मेरे भैया लोग।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप जो आप करती हैं वो आप प्रेरणा अपनी सखियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी दीजिए, क्योंकि
1: जी,
0: पर्यावरण को
1: मेरा यही
0: बचाना।
1: मानना है कि सब लोग हर साल एक पेड़ लगाया जाए, किसी का बर्थडे आए तो उसमें एक पेड़ गिफ्ट किया जाए।
0: बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अगर
1: जी, हम
0: सभी,
1: बर्थडे आता तो मैं गिफ्ट भी करती पेड़।
0: अच्छा, ये भी अच्छी कोशिश है आपकी और बढ़िया
1: जी
0: है। बरसात का मौसम आ ही रहा है, तो आप बढ़िया वृक्षारोपण कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ
1: जी
0: में,
1: मैम, जी
0: रिलेटिव्स के
1: मैम,
0: आना। बहुत बढ़िया, चलिए,
1: थैंक
0: आपने आपने हमें कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप
1: थैंक
0: इसी
1: यू
0: तरह कॉल
1: मैम।
0: करते रहिए। और लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो, हमसे एक सखी जुड़ रही
1: हेलो,
0: हैं, उनसे बातें करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं और क्या नाम है आपका?
1: मैं सागर से नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ। थैंक
0: अच्छा नंदिनी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए,
1: यू
0: आप
1: मैम।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मूवी का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ,
0: अच्छा बोल।
1: और सॉन्ग है मखना।
0: अच्छा चलिए ठीक है,
1: जी
0: हम आपकी पसंद का गीत ढूंढते हैं, तब तक आपसे बातें करते हैं। आप जानती
1: जी
0: होंगी
1: मैम।
0: कि आज जैव विविधता दिवस है,
1: जी
0: तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ओर से पर्यावरण को बचाने, जल को बचाने, शोर को बचाने, इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं?
1: जैसे कि अब हमें ना पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और हम ना जैसे कि हमारे यहाँ ना गाय हैं,
0: अच्छा
1: तो हमारे यहाँ जो भी हम बर्तन साफ करते हैं, अब पानी बचता है तो हम उनको पिला देते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छे, तो बढ़िया है।
1: जी
0: बरसात का मौसम भी आ रहा है, तो खूब वृक्षारोपण कीजिएगा,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: है ना, पर्यावरण को बचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, नहीं?
1: जी बिल्कुल मैम।
0: चलिए ठीक
1: जैसे
0: है,
1: कि अभी IPL चल रहा है ना, तो उसमें अभी ग्रीन डॉट बॉल रहती है ना जो भी, तो उनकी जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अवेयर
1: जी
0: हैं, बहुत अच्छा है। हम
1: जी
0: महिलाएं अगर इस दिशा में प्रयास करेंगी तो ये समस्याएं बहुत समय तक नहीं रहेंगी, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: बिल्कुल, आपने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट
1: और ये
0: किया
1: जो गाना आपको मिल गया है, वो रानू दीदी को डेडिकेट, और आपको। ओके
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप इसी
1: मैम,
0: तरह
1: नमस्ते।
0: कॉल करते रहिए, और आप सुनिए बाप की पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कहाँ से बोल रही हैं आप और अपना नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: अच्छा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी,
0: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप।
1: फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और गाने के बोल हैं।

0: फिल्म का नाम एक बार और बताइए।
1: रिश्ता कागज का।
0: रिश्ता कागज का। ओके ओके,
1: हाँ, है
0: चलिए
1: आपके यहाँ पर ये सॉन्ग।
0: ठीक है, हम आपके पसंद का ये गीत ढूंढते हैं, तब तक थोड़ा बातें करते हैं आपसे। आप
1: जी
0: जानती
1: जी
0: हैं आज जैव विविधता दिवस है,
1: जी
0: तो बताइए हम पर्यावरण के लिए, जल को बचाने के लिए क्या करने की कोशिश करती हैं?
1: जल को बचाने के लिए मैडम, सब जैसे कोई शावर से नहाते ना उसके लिए नहाना चाहिए, और बाल्टी में पानी लेके नहाना चाहिए, और पोछा लगाया हुआ पानी भी यूज करना चाहिए, ये लेट बात में करना चाहिए, और गाड़ी घोड़े जो ना कपड़े पोछे लगा के धोना चाहिए, जैसे थ्रेसर से मार के धोते ना ऐसा नहीं धोना चाहिए, और कहीं भी नल टपकता खुला दिखता ना हम तुरंत बंद कर देते, ऐसा नहीं अपने घर में करते, मार्केट में जाते दिखते, अगर कभी
0: बिल्कुल
1: नल खुला दिखता थोड़ा बहुत भी टपकता तो उसको टाइट से बंद कर देते कि पानी ना टपके, क्योंकि शाम तक एक बाल्टी तो भरा ही जाएगी,
0: जी
1: अगर
0: जी
1: एक बूंद बूंद भी टपकेगा तो भी बाल्टी
0: जी
1: भरा
0: जी
1: जाएगी।
0: जी जी बहुत बढ़िया, आप तो सच में वो सभी काम करती हैं जो हम सभी को करने ही चाहिए।
1: करना ही चाहिए, और जैसे ये भी, और पर्यावरण में क्या है कि जैसे लाइट है तो
0: जी जी
1: लाइट भी अगर अपना काम हो गया तो उसको बंद करके दूसरे कमरे में चले
0: हाँ
1: जाते हैं।
0: हाँ हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार बोल फिर से गाने के रिपीट कर दीजिए, कौन से बोले?
1: क्या हो गया मुझे तो जाने
0: हाँ
1: दे।
0: चलिए ठीक है, बस गीत बजाने के पहले एक बार कंफर्म करना चाह रहे थे हम लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिए। चलिए लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: शुक्रिया मैडम।

मुस्कुराहट भी एक खुशी है, लीजिए या दीजिए कुछ कम नहीं होगा। तो सखियों, आप सभी खूब मुस्कुराइए और खूब खुशियाँ बांटिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा पत्र के जरिए। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम महिला संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड है 462002। दीजिए अनुमति पूर्णिमा दुबे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला संसार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित राजन साजन मिश्र का ख्याल गायन। राग है बिलास खानी तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज आपने सुना पंडित राजन साजन मिश्र का ख्याल गायन, राग था बिलास खानी तोड़ी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। रेल मंत्रालय ने ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजा

0: सजन मिश्र का ख्याल गायन राग था बिलास खानी तोड़ी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। रेल मंत्रालय ने ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राम मोहन राय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जनजातीय किसानों द्वारा की जा रही जैविक खेती का अध्ययन करने के लिए प्रदेश से दल भेजा जाए। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइंड नामक 95 मिनट की यह फिल्म पहली एआई फिल्म है। प्रदेश इस समय भीषण गर्मी के चपेट में है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में आज हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

बागी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, अभिजीत और साथियों की आवाज़ें थीं। गीत था समीर का और आनंद मिलंद की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आशिकी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी कुमार सानू की। मदन पाल ने गीत लिखा था और तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने।

अनपर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ रूपकुमार राठौर, और इस गीत को लिखा सईद कादरी ने और मिथुन ने इसकी तर्ज बनाई।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं कन्यादान फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। नीरज के बोल हैं और शंकर जयकिशन ने इस गीत की तर्ज बनाई। तो आइए सुनते हैं कन्यादान फिल्म से ये नगमा।

संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं शंकर महादेवन, जसविंदर नरूरा, सुनीति चौहान और साथियों की आवाज़ों में मिशन कश्मीर फिल्म का ये नगमा। गीतकार हैं राहत इंदौरी, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

गीत कार्यक्रम में आइए सुनिए जोश फिल्म का नगमा, जिसे गाया है अभिजीत ने, लिखा समीर ने और तर्ज बनाई अनु मलिक ने। तो आइए सुनते हैं जोश फिल्म का ये नगमा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का नगमा। इस गीत की तर्ज बनाई हिमेश रेशमिया ने।

संगीत का कार्यक्रम इस आप सुन रहे हैं इस वक्त, और अब हम अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में। रास फिल्म का नगमा आप सुनेंगे अलका याग्निक और अभिजीत के युगल सुरों में, गीत समीर का, तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज़ में समीर की बोलों को। तर्ज बनाई अनु मलिक ने। फिल्म का नाम मुझे कुछ कहना है।

0: क्रम इस गीत के साथ ही संपन्न होता है। अब प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके पूर्व सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। निर्वाचन आयोग ने आज मध्यप्रदेश समेत 10 राज्यों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोही टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजेय शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि

0: कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके पूर्व सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। निर्वाचन आयोग ने आज मध्यप्रदेश समेत 10 राज्यों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला पर्वतारोही टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति बीएसएफ की अजेय शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। प्रदेश इस भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में आज हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। मयंक रेडियो श्रोता संघ कचई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में क्या यही प्यार है फिल्म का नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

हमें मिला महाराष्ट्र से स्वप्निल, अजय और इनके परिवार के सदस्यों ने, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और इनके परिवार के सभी सदस्य, दंतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा, आप सभी ने सुनना चाहा है कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आइए वक्त सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। नेपाल वाले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, देवरी भाटरपारा से के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, आप सभी ने सुनना चाहा है दिल का क्या कसूर फिल्म का नगमा। आवाज़ है कुमार सानू की और इस गीत को लिखा समीर ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जयस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है एक रिश्ता फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकदा, नसीम, आयशा खान, हादिया आसमा, सालिबा शुएब खान, मुस्तबा रऊफ शहीद, और गांधीबाग अकोला से रमेश वैशाली और इनकी परिवार के सभी सदस्य, प्रमीलागंज अटोल से बलवंत राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश शर्मा और ऋषि वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का नगमा श्रेया घोषाल और विशाल दादलानी और साथियों की आवाज़ों में। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 9वीं कड़ी।

0: श्रोतागण को मेरा नमस्कार। अब तक आपने पंचतंत्र के प्रथम दो प्रकरणों को सुना। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं तृतीय तंत्र काकोलुकियम। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये एक काक और उल्लू की कथा है। इस तंत्र में मुख्यतः पंडित विष्णु शर्मा ने ये बताया है कि पहले विरोधी रह चुकने वाले और इस समय मित्र भाव को प्राप्त शत्रुओं का विश्वास नहीं करना चाहिए।
1: वत्सगण, घने जंगल में एक बड़ा वृक्ष था। वहां मेघवर्ण नामक एक कौवा अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसी वृक्ष में अरिमर्दन नाम का एक उलूक राज भी जाति बंधुओं के साथ निवास करता था, और जब भी कोई कौवा उसके सामने आता उसे मार डालता। कौवा और उलूक का जातिगत बैर जो था, कौवे ने सारे पक्षियों की सभा बुलाई।
2: मित्रों, हमारा शत्रु उत्कट और उद्यम संपन्न है। वो निरंतर सायंकाल आकर हमारे पक्ष का विनाश करता है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हम लोगों को रात्रि में दिखाई नहीं देता और दिन में शत्रु के दुर्ग को न पहचानने के कारण उसे मार नहीं सकते। अब हमें क्या करना चाहिए? अति शीघ्र सोच कर बताएं।
1: मंत्रियों के परामर्श से मेघवर्ण ने उज्जीवी, संजीवी, अनुजीवी

0: जीवी तथा चिरंजीवी नाम के पांचों सचिवों से क्रमशः पूछा। सभी ने अपने अपने विचार बताए। तब मेघवर्ण ने स्थिर जीवी से पूछा,
1: तात, ये कौओं और उल्लुओं के मध्य इस प्रकार का प्राणांतिक बैर क्यों हुआ?
2: एक बार सारे पक्षियों ने अपने राजा गरुड़ के विरुद्ध कहा कि अब वो गरुड़ के स्थान पर कोई दूसरा राजा चुनेंगे। सब ने तय करके उलूक राज को अपना राजा चुना। तभी एक कौवा वहां आया। इस निर्णय से उसे बड़ी हंसी आई। उसने कहा,
3: अरे भाई, ये उचित नहीं हो रहा है। एक दीवान कराल वदन का अभिषेक किया जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इस पर विचार ही क्यों करना, जब गरुड़ हमारे राजा हैं। महान व्यक्तियों का नाम ग्रहण करने मात्र से ही कभी कभार बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे चंद्रमा का नाम लेते ही खरगोश सरोवर में सुखपूर्वक रहने लगे थे।
4: किसी वन में चतुर्दंत नाम का एक हाथियों का राजा निवास करता था। एक बार वहां सूखा पड़ा, कई सालों की अनावृष्टि हुई, कई छोटे बड़े तालाब, पोखर और सरोवर सूख गए। सभी हाथियों ने मिलकर अपने राजा चतुर्दंत से कहा,
5: देव, प्यास से बहुत से गज शिशु मरणासन हो गए हैं, कुछ तो मर भी गए हैं। इसीलिए किसी ऐसे जलाशय की खोज की जाए जिसका जल पीकर ये सब स्वस्थ हो सके।
6: हाँ, मैं जानता हूं आप सब बहुत दुखी हैं। पता नहीं इंद्रदेव का कोप कब तक चलता रहेगा।
5: आप अति शीघ्र कोई व्यवस्था करें। आप जहां पहले निवास करते थे, क्या वहां कोई समतल भूमि का जलाशय नहीं है जहां हम सब निवास कर सके?
6: यह आपने उचित स्मरण कराया। दक्षिण की ओर कोई 200 कोस की दूरी पर एक स्थान में समतल भूमि पर ही एक अति विशाल जलाशय है, जो पाताल गंगा के जल से सर्वदा परिपूर्ण रहता है। आप सब वहां चलें।
5: जैसा आप कहें प्रभु, वैसे भी इतनी दूरी को तय करने में 5 दिन तो लग ही जाएंगे। हम आज ही प्रस्थान करेंगे।
4: गजाधिपति की आज्ञा से सारे गजों ने तत्काल प्रस्थान कर दिया। 5 दिन तक निरंतर चलते रहने के पश्चात उन्हें वो जलाशय मिल गया। सभी हाथी प्रसन्न थे। सबने अपनी प्यास बुझाई। सारे दिन जलाशय के किनारे खूब आनंद लिया। उस जलाशय के चारों ओर कोमल भूमि में शशकों के असंख्य बिल बने हुए थे। गजों के पैर से कुचल जाने के कारण अनेक खरगोशों के बिल टूट फूट गए। गजों के स्वच्छंद विहार से कई खरगोश मर गए। कुछ तो अधमरे से पड़े रहे। उन गजों के चले जाने पर दुखी खरगोशों ने विचार किया,
7: हम लोग अब नष्ट हो ही गए हैं, परंतु जितने शेष हैं उनकी तो रक्षा होनी ही चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये हाथियों का झुंड यहाँ प्रतिदिन आता रहेगा, क्योंकि अन्य किसी जलाशय में जल रह ही नहीं गया है।
8: ठीक कह रहे हो मित्र, हमारा विनाश सुनिश्चित है। जैसे सांप के सूंघने मात्र से व्यक्ति मर जाता है, कंस जैसा राजा हंसते हुए प्राण दंड देता है, उसी प्रकार हाथी हमें स्पर्श मात्र से मार डालता है।
7: नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो मित्र, हिम्मत नहीं हारते, कोई ना कोई उपाय अवश्य ही निकलेगा।
8: मुझे तो लगता है मित्र, हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए, अन्य उपाय रह ही क्या गया है।
7: नहीं भाई, पिता एवं पितामहों के काल से चले आए इस स्थान को सहसा छोड़ना संभव नहीं। उन्हें डराने के लिए अन्य उपाय किए जाने चाहिए, ताकि वो भयभीत होकर यहाँ फिर ना आ सकें।
8: हाँ, यदि ऐसी बात है तो उन्हें त्रस्त करने का एक उपाय है मेरे पास। हम में से कोई भी एक चंद्रमा का झूठा दूत बनकर हाथी के पास जाए और उसे रोके, तो बात बन सकती है। परंतु इस कार्य के लिए वाक्पटु,

0: ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञाता होना आवश्यक है।
1: मुझे लगता है इस कार्य के लिए आप ही योग्य रहेंगे।
0: ठीक है, ये उचित भी है। हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए इससे अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता।
2: और फिर शीघ्र गति को ही दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। गजाधिपति के समीप पहुंचने के बाद वो एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया और गज को संबोधित करके बोला,
3: अरे ओ दुष्ट गजराज, बाहर निकल। इस प्रकार निशंक भाव से तुम चंद्रमा के जलाशय में क्यों आया करते हो? आज के बाद ऐसा दुस्साहस मत करना। शीघ्र यहाँ से लौट जाओ मैं कहता हूँ।
4: कौन हो तुम?
3: मैं शीघ्रगति नाम का शशक हूँ। मैं चंद्र कुंडल में निवास करता हूँ और इस समय महाराज चंद्रमा ने मुझे दूत बनाकर भेजा है।
4: अरे भाई शशक, भगवान चंद्रमा ने क्या संदेश भेजा है, शीघ्र कहो जिससे अविलंब उसका पालन किया जा सके।
3: कल आपके समूह के साथ आकर आपने उस जलाशय में रहने वाले मेरे कुटुंबों का वध किया है। अब आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी प्रलोभन से उस जलाशय के समीप आने का प्रयास न करें। यही चंद्रदेव का आदेश है।
4: लेकिन भगवान चंद्रदेव कहाँ हैं?
3: आपके समूह द्वारा दी गई मृत्यु से बचे शेष खरगोशों को आश्वासन देने इस समय वे जलाशय में आकर बैठे हुए हैं।
4: अरे भाई शीघ्र गति, मुझे महाराज चंद्र के दर्शन करवाओ जिससे उन्हें प्रणाम करके मैं अन्यत्र जा सकूं।
3: ठीक है, आप एकाकी चलें, मैं आपको दर्शन करा दूंगा।
4: अच्छा।
0: अभी रात्रि का समय है, जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है मैं उसी को दिखा देता हूँ।
3: आइए गजराज।
4: चलिए।
0: ये है महाराज चंद्र जो जल में समाधिस्थ होकर बैठे हैं। आप शांत होकर बिना कुछ कहे सुने इनको प्रणाम करके शीघ्र यहाँ से चले जाइए। यदि इनकी समाधि टूट गई ना तो आप पर ये क्रुद्ध हो जाएंगे।
4: ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ।
5: इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी बड़े लोगों का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य का त्राण हो जाता है। और भी एक बात है, यदि मनुष्य अपने उच्च जीवन की कामना करता हो तो उसे नीच, आलसी, कापुरुष, व्यसनी तथा कृतज्ञ व्यक्ति को कभी भी राजा नहीं बनाना चाहिए। जैसे न्याय की आशा में शशक एवं कपिंजल दोनों ही विनष्ट हो जाते हैं। सुनो, मैं कभी एक वृक्ष पर निवास करता था। उसी वृक्ष के कोटर में कपिंजल नाम का एक चटक गौरा रहा करता था। सूर्यास्त हो जाने पर हम दोनों वहां आकर शास्त्र चर्चा करते। एक बार कपिंजल आजीविका के लिए अन्य चटकों के साथ धान युक्त प्रदेश की ओर चला गया। रात्रि काल तक वो वापस नहीं आया। मैं उसके वियोग में उद्विग्न होकर सोचने लगा, आज कपिंजल क्यों नहीं आया? क्या किसी पाश में फंस गया है या किसी ने उसे मार डाला? यदि वह सकुशल होता तो मेरे बिना अन्यत्र रह नहीं सकता था। कितने दिन व्यतीत हो गए, आज भी नहीं आया। अरे उसके कोटर में ये हलचल कैसी? उसमें तो कोई घुस गया है। ये तो शशक है, उसने कपिंजल की जगह ले ली। क्या मैं उसे रोकूं? छोड़ो, अब मित्र कपिंजल क्या ही आएगा।
0: मित्र?
5: अरे कपिंजल आ गया।
0: मित्र, मैं आ गया।
5: वाह मित्र, दूसरे देश में चावल खाकर अच्छे स्थूलकाय हो गए हो।
0: अच्छा,
5: पर कहाँ रहे इतने दिन मित्र?
0: हाँ मित्र, कुटुंबजनों के साथ कुछ दिन लग गए। क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको सूचना नहीं दे पाया। परंतु मित्र, ये मेरे कोटर में कौन है? कौन? शशक? यहाँ कैसे रहते हो तुम? ये तो मेरा निवास है भैया, तुम मेरे घर के भीतर क्यों घुस आए हो? अब शीघ्र यहाँ से निकल जाओ भैया, शीघ्र निकल जाओ यहाँ से।
1: तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। क्यों तुम इस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो?

0: कूप, तड़ाग, देवालय अथवा वृक्ष पर जीवों का तभी तक आधिपत्य होता है जब तक वह वहाँ रहते हैं। वहाँ से एक बार हट जाने के बाद पुनः उनका आधिपत्य नहीं रह जाता। मुनियों ने यही न्याय लिखा है।
1: अरे वाह वाह वाह, यदि तुम शास्त्र को इतना ही प्रमाण मानते हो तो मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ, हम लोग चलकर किसी धर्मशास्त्री से ही पूछ लेते हैं। वो जिसको देगा वही इस घर का अधिकारी होगा।
2: उन दोनों के साथ न्याय देखने मैं भी चल पड़ा। इसी बीच तीक्ष्ण दंत नाम का एक विड़ाल उनके विवाद को सुनकर मार्ग में पड़ने वाली नदी के किनारे जाकर बैठ गया और हाथ में कुश लेकर नेत्रों को बंद करके अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर एक पैर से भूमि को स्पर्श करता हुआ सूर्य की ओर मुख करके धर्मोपदेश देने लगा।
3: हे प्रभु, ये संसार तत्वहीन है, प्राण भी क्षण भंगुर है। इस संसार की माया से बचने के लिए धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य भी शाश्वत नहीं होता, मनुष्य निरंतर आसन्न है। इस कारण मनुष्य को धर्म का संचय करना चाहिए। परोपकार करना पुण्यदायक और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पापदायक होता है। हे प्रभु, सभी को सद्बुद्धि दे, जीव हत्या का निषेध कर दे।
0: अरे कपिंजल, नदी के किनारे तपस्वी महात्मा बैठे हैं, चलो इन्हीं से पूछ लिया जाए।
1: महात्मा, ये तो विड़ाल है, ये तो हमारा स्वाभाविक शत्रु है। चलो एक काम करते हैं, इनसे ना दूर से ही पूछ लेते हैं, सन निकट जाने पर कहीं ये हम पर झपट ना पड़े।
0: हे तपस्विन धर्मोपदेशक महाराज, हम दोनों के कुछ विवाद हैं, अतः आप धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय दें। आपकी दृष्टि में जो दोषी होगा उसे मारकर खा जाइएगा।
3: सज्जनों, आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अहिंसा को ही धर्म कहा गया है। जो व्यक्ति अहिंसक जीवों को मारता है वो तो नरकगामी होता है। मैं तुम लोगों को खाऊंगा नहीं, बल्कि जय पराजय का निर्णय करूंगा। परंतु मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, दूर रहने पर तुम लोगों की बात ठीक से नहीं सुन पाऊंगा, तो उचित निर्णय कैसे दूंगा। इस कारण मेरे समीप आकर विश्वास के साथ मेरे कान में स्पष्ट रूप से सच्ची बात बता दो, ताकि उचित निर्णय देकर मैं अपना परलोक सुधार सकूं।
2: हाय रे दुर्भाग्य, शशक और कपिंजल ने उस पर विश्वास कर लिया, उसके समीप जाकर गोद में बैठ गए। बस फिर क्या था, एक को पंजे में और दूसरे को दांत रूपी आरी के बीच डालकर मार दिया। इसीलिए कहता हूं, आप लोग दीवान एवं क्षुद्र स्वामी को पाकर कपिंजल और शशक की तरह एक दिन यमलोक जाएंगे।
4: उस कौवे की बात सुनकर पक्षियों ने पुनर्विचार का सोचा। उधर उल्लू अभिषेक की प्रतीक्षा में बैठा रहा। कुछ देर पश्चात पूछने पर उसे ये पता चला कि काक ने उसके राजा बनने का विरोध किया है। वो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसी दिन से दोनों का बैर प्रारंभ हो गया। इन बातों का विचार कर मेघवर्ण ने पूछा,
5: तात, इस परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है?
6: बस अब मैं छल द्वारा शत्रु का विनाश करूंगा। जैसे बकरी को ले जाने वाले ब्राह्मण से ठगों ने बकरी को छीन लिया।
5: वो कैसे?
6: किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार उन्हें अपने यजमान के घर से एक बकरी मिली।
5: अच्छा।
6: वो स्थूल होने के कारण अधिक चलने में असमर्थ थी। सो ब्राह्मण ने उसे कंधे पर उठा लिया।
5: अच्छा।
6: और अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में तीन धूर्त मिले जो भूख से व्याकुल थे। वो तीनों ब्राह्मण से उस

0: बकरी को छीनने का विचार करने लगे। तीनों थोड़ी थोड़ी दूर पर छिप गए। एक उस ब्राह्मण के पास आकर बोला,
1: अरे विप्र, लोक परंपरा के विरुद्ध ये हास्यास्पद कार्य क्यों कर रहे हो? इस अपवित्र कुत्ते को कंधे पर क्यों ढो रहे हो? कुत्ता, कुकुट तथा चांडाल तीनों अस्पृश होते हैं, क्या ये तुम्हें ज्ञात नहीं?
2: अरे तुम अंधे हो क्या जो इस अजा अर्थात बकरी को कुत्ता बता रहे हो?
1: हे महाराज, आप क्रोधित ना हो वे। अपनी इच्छा अनुसार आप जाइए, मुझे आपके कार्य से कोई प्रयोजन नहीं है।
2: ना जाने कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, अच्छी भली बकरी उसे कुत्ता दिखाई पड़ रही है। मैं तो आगे बढ़ता हूँ।
3: अरे पंडित जी, पंडित जी, अरे रे रे रे रे रे, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? हो सकता है ये मरा हुआ बछड़ा आपका अत्यंत प्रिय हो, परंतु फिर भी इसे कंधे पर ढोना उचित नहीं है, ये तो अशुद्ध होता है।
2: लो एक और अंधा। क्यों भाई, ये बकरी गोवत्स दिखाई दे रही है और वो भी मृत, इसकी चंचलता भी नहीं देख पा रहे हो तुम?
3: भगवान भगवान, क्रोध ना कीजिए, मैंने अज्ञानवश ऐसा कह दिया, आप जो उचित समझे करें, मुझे क्या।
2: हे प्रभु, शीघ्र मैं इस जंगल को पार कर लूं तो ही अच्छा।
4: राम राम राम राम राम राम, राम।
5: अरे महाराज, ये तो बहुत अनुचित कार्य कर रहे हैं आप, एक गधे को कंधे पर रखकर ढो रहे हैं। गधे के स्पर्श मात्र से आपको सवस्त्र स्नान करना चाहिए। अरे अरे, अरे इसे उतार कर फेंक दीजिए, कहीं आपको कोई देख न ले।
4: अरे ये क्या कह रहे हो भाई, जरा ध्यान से तो देखो, बकरी है,
5: बकरी है। अरे देवता, उम्र के साथ साथ क्या आपकी नजर भी चली गई? अरे अच्छे खासे गधे को आप बकरी कह रहे हैं भला?

0: अब तो वो ब्राह्मण उस बकरी को वहीं पर रखकर भाग गया। फिर तीनों धूर्तों ने मिलकर आनंद से भोग लगाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि छल एवं कपट को जानने वाले किसी को भी ठग सकते हैं। नए सेवकों के विनय भाव से, अतिथियों के वचन से, कामिनियों के रोने से और धूर्त जनों के प्रवंचनात्मक वचनों से कोई व्यक्ति भी बिना ठगाए नहीं बचा है। परंतु दुर्बल व्यक्ति भी यदि संगठित हो तो उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। जनसमूह अत्यंत दुर्जेय होता है।
1: तात, मुझे आदेश दे। आपका आदेश मेरे लिए पालनीय है।
0: बस साम दाम दंड और भेद को छोड़कर जो छल रूपी पंचम उपाय मैंने निश्चित किया है,
1: हाँ,
0: उसका स्वरूप बताता हूं।
1: बताइए।
2: मेघवर्ण ने स्थिर जीवी के अनुसार ही आचरण किया। उसने शत्रु पक्ष का विश्वास जीत लिया। स्थिर जीवी ने कहा था, शत्रु भी कभी कभी हितकारक हो जाते हैं, जैसे शत्रुओं की आपस में कलह करवा कर ब्राह्मण बच गया। किसी नगर में द्रोण नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। एक बार किसी यजमान ने उसे दो बछड़े दिए। उस ब्राह्मण ने उन बछड़ों का बाल्यकाल से ही लालन पालन किया। वे पर्याप्त पुष्ट हो गए। एक दिन एक चोर ने उसे चुराने की सोची।

ब्राह्मण के उन दोनों बछड़ों को आज रात मैं चुरा लूंगा। हाँ, वो ब्राह्मण सो रहा होगा।

0: बाप रे बाप, ये विशाल काय, लाल बड़ी बड़ी आंखें, तीक्ष्ण दंत, शुष्क कपोल, पिंगल वर्ण, दाढ़ी मूछ, अत्यंत भीषण लगने वाला ये कौन है?
1: कौन हो? किधर जा रहे हो? मैं भूखा हूँ, तुम्हें खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा।
0: आप कौन है?
1: मैं सत्यवचन नाम का ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम भी तो मुझे अपना परिचय दो।
0: मैं क्रूर कर्मा नाम का चोर हूँ, इस दरिद्र ब्राह्मण के दोनों बछड़ों को चुराने वाला हूँ।
1: अच्छा, तो चलो, मैं भी 6 दिनों से भूखा हूँ और मेरे भोजन का समय भी हो चुका है। आज उस ब्राह्मण को खाकर अपनी उदर पूर्ति करूंगा। एक ही स्थान पर दोनों कार्य हो जाएंगे।
0: वो तो ठीक है, परंतु मैं बछड़ों को चुरा कर चला जाऊं, फिर आप इन्हें खाइएगा।
1: मूर्ख समझते हो मुझे? बछड़ों को चुराते हुए कहीं ब्राह्मण की नींद खुल गई तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा।
0: और अगर इसे खाते समय कोई विघ्न पड़ गया तो मैं इन बछड़ों को नहीं चुरा पाऊंगा, इसलिए पहले मुझे बछड़ों को चुरा लेने दीजिए, फिर आप ब्राह्मण को खा लीजिएगा।
1: नहीं, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा।
0: नहीं देव, पहले मैं बछड़ों को चुराऊंगा।
1: नहीं, पहले ब्राह्मण।
0: नहीं, अगर ब्राह्मण जाग गया तो मैं बछड़ों को नहीं चुरा पाऊंगा।
2: दोनों के विवाद के कोलाहल से ब्राह्मण जाग गया। चोर ने कहा,
0: हे ब्राह्मण, ये राक्षस तुम्हें खाना चाहता है।
1: नहीं ब्राह्मण, ये चोर तुम्हारे बछड़ों को चुराना चाहता है।
0: नहीं देव, ऐसा नहीं।
1: ऐसा ही है।
2: उन दोनों की बात को सुनकर ब्राह्मण चारपाई से उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया। सावधान होकर इष्ट देव को स्मरण करने लगा, मंत्र जप से राक्षस को और लाठी से चोर को भगा दिया। इसीलिए कहते हैं, कभी कभी शत्रु भी हितकारक हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिसे हम सुनेंगे अगली बार, अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 9वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भोपाल में इंटरनेट

नेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके पूर्व सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। निर्वाचन आयोग ने आज मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजेय शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है और

0: यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले दो दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में आज हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

0: बहनों, उत्साह के साथ किए गए कार्य व्यक्ति को सफल बनाते हैं। कभी भी निराश ना होना, ना हिम्मत हारना, यही सफलता का मूल मंत्र है। बहनों, इसी सुविचार के साथ महिला सभा के सभी श्रोताओं को प्रतिभा चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, पृथ्वी पर जीवन के लिए जैव विविधता नितांत जरूरी है। ये स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करती है, जो मनुष्यों सहित ग्रह पर सभी जीवों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, भोजन और ताजा पानी प्रदान करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए जैव विविधता भी महत्वपूर्ण है। अधिक प्रजातियों और अनुवांशिक विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र अधिक लचीले होते हैं। बहनों, जैव विविधता से तात्पर्य सभी जीवों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों की विभिन्नता एवं असमानता को दर्शाता है। वर्तमान में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस तीव्रता से जैव विविधता विलुप्त हो रही है वो चिंताजनक है। इसलिए जैव विविधता और इसके संरक्षण का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी विश्व जैव विविधता दिवस संपूर्ण विश्व में आज ही के दिन यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता सम्मेलन के अनुसार धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में उपस्थित अथवा उससे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। जीवन में जैव विविधता के महत्व को देखते हुए हम सभी को ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में टिकाऊ, समृद्ध और आर्थिक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान कर सके। बहनों, जैव विविधता में कमी होने से प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ और तूफान आने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है। हमारा जीवन प्रकृति का अनुपम उपहार है, अतः पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, पठार, समुद्र, नदियां, महासागर, इन सभी प्रकृति की देन का हम सभी को संरक्षण करना जरूरी है। बहनों, प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व एवं उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। जैव विविधता का संरक्षण और उसका टिकाऊ उपयोग पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहनों, ये तो आपसे अभी हमने चर्चा की विश्व जैव विविधता दिवस पर। और बहनों, प्रकृति ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, जिसे उन्होंने हमें एक अनमोल उपहार और आशीर्वाद के रूप में दिया है। इसको सहेजना और संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए प्रकृति की आगोश में चलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये

बड़े अच्छे लगते हैं। ये प्यारा सा गीत सुना आपने अमित कुमार के स्वर में फिल्म बालिका वधू से। आनंद बख्शी के गीत को संगीत में पिरोया था आर.डी. बर्मन ने। बहनों, महान समाज सुधारक और आधुनिक भारत के जनक माने जाने वाले राजा राम मोहन राय का जन्म आज ही के दिन यानी 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई, जहां उन्होंने कुरान, सूफी, रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लूटो एवं अरुस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया। बहनों, वंचितों और महिलाओं के समग्र उत्थान हेतु सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता, भारतीय प्रेस के जनक और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने एक प्रखर प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक के रूप में उस दौर में जो भी कार्य किए उसे भुलाया नहीं जा सकता। राजा राम मोहन राय समाज में व्याप्त कुरीतियों, कर्मकांडों, मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं, सामाजिक धर्मांधता और अंधविश्वास के खिलाफ थे। उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण आंदोलन चलाया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध, बहुविवाह विरोध, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ आंदोलन किया। बहनों, उनके प्रयास

0: उन्हें 1829 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर बहुविवाह प्रथा का विरोध किया गया, महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह को अधिकार और महिलाओं के लिए संपत्ति रखने का अधिकार भी शामिल था। महिलाओं के हक में आवाज उठाने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। और बहनों, अब रुख करते हैं साहित्य की ओर। बहनों, साहित्य की एक विधा है काव्य, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शशि प्रभा अर्जरिया का काव्य पाठ, मैंने सच गर कहा तुम ना सुन पाओगी। चलिए सुनते हैं ये काव्य पाठ।
1: मैंने

था, जख्म भरता नहीं, आंसू रुकते नहीं, जख्म भरता नहीं,

तो फिर भला कैसा ये मायका, रिश्ते तो हैं बहुत मगर कोई माँ के जैसा ना, रिश्ते तो हैं बहुत मगर कोई माँ के जैसा ना।

0: हो माँ
1: की याद बहुत आती हूँ माँ। अभी आपने ये काव्य पाठ सुना शशि प्रभा अर्जरिया से। खुद को ना कमजोर समझ तू, कहने दे जो दुनिया कहती है, तू शक्ति है, तू नारी है, असंभव को भी संभव कर सकती है। ये तो कटु सत्य है कि जो असंभव को भी संभव में बदल दे उसी का नाम नारी शक्ति है। नारी ने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर हर कार्य क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उसने ये साबित किया है कि वो जितने अच्छे से घर गृहस्थी की गाड़ी को चला सकती है तो उतने ही अच्छे से अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती है। परंतु परिवार और करियर के बीच में संतुलन बनाए रखना भी दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। इसलिए जरूरी है कि कार्य की प्राथमिकताएं निर्धारित करें, समय के प्रबंधन का ध्यान रखें और घर परिवार और कार्य क्षेत्र के बीच सीमा रेखा जरूर बनाएं और दफ्तर का कार्य घर पर हरगिज ना लाएं। घर पर रहते हुए अपना समय घर के लोगों पर ही खर्च करें। बहनों, जरूरी कार्यों को प्राथमिकता सूची में रखें, बाकी कार्यों को बाद में निपटाएं और अपनी क्षमता से अधिक कार्य ना करें और अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से मना करें या ना कहना सीखें। बहनों, छोटे मोटे कार्यों में बच्चों की मदद लें, बच्चों को अपना कार्य स्वयं करना सिखाएं, जैसे अपना स्कूल बैग जमाना, अपने कपड़े जूते चप्पल जगह पर रखना, खाली लंच बॉक्स बॉटल को नियत स्थान पर रखना। अपने दिशा निर्देशन में बच्चों को कुकिंग का काम, घर में साफ सफाई का काम अवश्य सिखाएं। इसमें आपका काम भी कम होगा और बच्चे जिम्मेदारी भी समझने लगेंगे। बहनों, काम के अलावा परिवार, दोस्तों और

अपने शौक के लिए समय निश्चित करें, ये तनाव कम करने में मदद करता है। बहनों, सर्वप्रथम स्वयं की देखभाल जरूरी है, इसलिए व्यायाम, योग, ध्यान के लिए समय निर्धारित करें और पर्याप्त नींद लें। बहनों, स्वस्थ जीवन शैली आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखती है। काम के बाद खुद को पूरी तरह से कार्य क्षेत्र से डिस्कनेक्ट कर लें ताकि आप मानसिक रूप से रिलैक्स हो सकें। बहनों, घर के कार्य के लिए भी ऑफिस की तरह समय सीमा सुनिश्चित करें और आराम करने वाली जगह को वर्क प्लेस ना बनाएं। बहनों, वीकेंड पर परिवार के साथ घूमने जाएं, आप चाहें तो पिकनिक, मूवी या शॉपिंग पर जा सकती हैं। बहनों, घर के कार्य की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबके साथ साझा करें, ऐसा करने से अकेले आप पर सारा बोझ नहीं पड़ेगा। सबके मिलकर काम करने से आपका काम आसान हो जाएगा और आप पर शारीरिक और मानसिक दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो बहनों, इस तरह आप अपने घर, परिवार और कैरियर के बीच में संतुलन बनाए रख सकती हैं और खुश रह सकती हैं। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है। चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत आशा भोसले के स्वर में। फिल्म है एक फूल दो माली, संगीत दिया है रवि ने और शब्द रचना है प्रेम धवन की।

अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना फिल्म एक फूल दो माली से, और अब आपको देते हैं उपयोगी जानकारी। बहनों, मौसम चाहे गर्मी का हो, बारिश का हो या फिर सर्दी का हो, शरीर की बाहरी देखभाल करना जितना जरूरी है उतनी ही उससे अधिक आंतरिक रूप से शरीर की देखभाल करना भी जरूरी है। कहते हैं ना, चाय अच्छी लगती है ना खाना भाता है, गर्मी में बस ठंडा पानी याद आता है। और बहनों, ये ध्यान रखना नितांत जरूरी।

हैं कि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, इसलिए इन दिनों एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। बहनों, गर्मियों में शरीर को ठंडा और स्वस्थ रखने के लिए खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत जरूरी है। बहनों, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों के सेवन की मात्रा बढ़ाएं, जैसे पर्याप्त पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, आम का पना, सत्तू और लस्सी का सेवन करते रहें। ये सभी पानी की कमी को पूरा करते हैं। बहनों, गर्मी में दही और लस्सी का सेवन पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त रखता है। बहनों, रसीले फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा और अंगूर का सेवन करते रहें। हरी सब्जियों में लौकी, तोरई, चौरई, कद्दू, करेला, टिंडे, परवल का सेवन भी करते रहें। बहनों, ज्यादा मसालेदार, तला भुना और फास्ट फूड खाने से बचें। बहनों, इस मौसम में चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम करें, क्योंकि ये शरीर को निर्जलित यानी डिहाइड्रेट कर सकते हैं। शरीर में पानी की कमी होने से उल्टी, दस्त, हैजा, लू लपट, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बहनों, इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का पानी का सेवन करते रहें और स्वस्थ रहें। गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी, इस विषय पर अभी आपको उपयोगी जानकारी दी। और बहनों, बातें करते करते अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो इतना ही कहूंगी, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बहनों, आप स्वस्थ रहिए, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए और अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आरंभ में लीजिए सुनिए राम कुमार प्रजापति व साथियों के स्वर में ये विवाह गीत।
1: कि बिटिया हमेश प्रथमई गणेश और शारदा से उपमा बिटिया

आ बिटिया से हीन होते जो दीन रहते मलिन होती बिटिया। बिटिया है धन्य अनुपम अनन्य प्रतिभा प्रसन्न पावे बिटिया। बिटिया है धन्य अनुपम।

शकुंतला राजपूत के गाए इस विवाह गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अटल शुक्ला के गाए भजन।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आपने सुने अटल शुक्ला के गाए भजन। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
3: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार

0: सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, बोल नीरज के हैं और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: भी वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, बोल नीरज के हैं और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
2: धरती

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को सबकी साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव बनाए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट इवेंट आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस आयोजन में बिग कैट और जैव विविधता संरक्षण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर भी विशेष प्रस्तुति इस कार्यक्रम में दी गई। इसके साथ ही इंडियाज बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2026 सहित कई प्रकाशनों और डिजिटल पहलों का विमोचन भी हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि
1: धरती पर 30% भाग जो है वो वनों से आच्छादित, भारत में भी लगभग 23% वन आच्छादित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया के सामने लक्ष्य रखा था कि हम 3.5 बिलियन टन कार्बन श्रिंक के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, भारत ने उसको 90% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और हमने जो दुनिया को अपना टारगेट दिया है 2030 तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे।
0: धार की भोजशाला में आज शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार की नमाज पर रोक लग गई है। दोपहर 1 बजे गर्भगृह में महाआरती हुई और फूलों से सजे परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भोपाल में 12 मई को हुई त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कटारा हिल्स थाने में दर्ज दहेज मृत्यु के इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने सीबीआई को पूरे प्रदेश में जांच के अधिकार भी दे दिए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज प्रदेश के दौरे पर हैं। वे रात में 8 बजे अशोकनगर पहुंचेंगे। श्री सिंधिया वहां जैन तीर्थ थुबोन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कल सुबह श्री सिंधिया नक्षत्र वाटिका शिवपुरी में कार्यक्रम के बाद गुना के लिए रवाना होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज से 24 मई तक प्रदेश के 7 जिलों के दौरे पर हैं। वे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण, निवाड़ी, छतरपुर और सतना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके लिए आमजनों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का मसौदा gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या हितधारक 5 जून 2026 तक अपने सुझाव वेबसाइट मेल sogad1@mp.gov.in पर कर सकता है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें गोलकीपर आयुष रजक, डिफेंडर अंश बहुत्रा और करण गौतम, मिडफील्डर अवि माणिकपुरी और फॉरवर्ड सिद्धार्थ बेन तथा गाजी खान शामिल हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में जनभागीदारी सप्ताह एवं गरिमा उत्सव के तहत ग्राम कानोड़ में 15 उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। शिवपुरी जिले में ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान RCT के द्वारा 13 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ। और आगरमालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर के प्राचीन कमलकुंड से 7 कछुओं को कल वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित जलाशय में छोड़ा गया। वहीं IPL में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रन

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश

0: मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं

0: प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव दो दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला

0: रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश कुर्बानी। इस फिल्म का गीत सुनिए नाजिया हसन की आवाज में। बोल इंदिवर के हैं और संगीत है बिद्दू का। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। ग्राम संदलपुर ग्वालियर से सादिक राम यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी। साथ ही शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म कुर्बानी का ये गीत।

श्रोता संघ नवागढ़ कटई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से ही दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लबी, आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले के स्वर में फिल्म नमक हलाल का गीत। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए शरण प्रभाकर और बप्पी लहरी की आवाज़ों में फिल्म अरमान का गीत। बोल अनजान के हैं और संगीत है बप्पी लहरी का। पसंद आप सभी की। ग्राम महसवाड़ी महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय। ग्राव फ्रांसी हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म अरमान का ये गीत।

महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी की पसंद है आशा भोसले के स्वर में फिल्म डॉन का ये गीत सुनने की। इस गीत को लिखा है इंदीवर ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म हथकड़ी से। आवाज़ आशा भोसले और साथियों की है। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने। पसंद भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की सबकी साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में BSF के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बल ने देश का गौरव बनाए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट इवेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। धार की भोजशाला में आज शुक्रवार हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को वाग देवी का मंदिर करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार की नमाज पर रोक लग गई है। दोपहर 1 बजे गर्भगृह में महाआरती हुई। भोपाल में 12 मई को हुई त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच अब CBI करेगी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कटारा हिल्स थाने में दर्ज दहेज मृत्यु के इस मामले को CBI को सौंपा गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज प्रदेश के दौरे पर हैं। वे रात में 8 बजे अशोकनगर पहुंचेंगे। श्री सिंधिया वहां जैन तीर्थ थुबोन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज से 24 मई तक प्रदेश के 7 जिलों के दौरे पर हैं। वे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण, निवाड़ी, छतरपुर और सतना में पार्टी कार्य

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम

0: शाम 6 बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकेंगे शाम 5:07 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीत, आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। समय याद रखिएगा शाम 7:02। रात 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में कार्यक्रम खेल जगत, सुनिएगा रात 9:30 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026, इस विषय पर वार्ता, वार्ताकार हैं देवेंद्र खुराना। रात 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और रात 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित राजन साजन मिश्र का राग यमन में ख्याल गायन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्स पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आरंभ में लीजिए सुनिए राम कुमार प्रजापति व साथियों के स्वर में ये विवाह गीत।
1: कि बिटिया हमें प्रथमई गणेश और शारदा से सी उपमा बिटिया

बिटिया बिटिया से हीन होते जो दीन रहते मलिन होती बिटिया। बिटिया है धन अनुपम अनन्य प्रतिभा प्रसन्न पावे बिटिया। बिटिया है धन अनुपम।

उर्मिला पांडे के स्वर में अभी आपने सुनी विवाह गारी। लीजिए अब सुनिए शकुंतला राजपूत के स्वर में ये विवाह गीत।

इस विवाह गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए अटल शुक्ला के गाए भजन।

अटल शुक्ला के गाए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत। गीत लिखा है मजरूह ने और

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म रज़िया सुल्तान का गीत। गीत लिखा था जानिसार अख्तर ने और संगीतबद्ध किया था खयाम ने। चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए फिल्म निकाह का गीत सलमा आगा की आवाज़ में। बोल हसन कमाल के हैं, संगीत है रवि का।

हेमलता की आवाज़ में लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का ये आखिरी गीत। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे। गीत निजा फाजिल का है, संगीत है उषा खन्ना का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन एवं वन्यजीव संरक्षण पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को सबकी साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव बनाए रखा है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके लिए आमजनों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का मसौदा gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है। सरकार ने आज सूचित किया है कि ईद उल अधा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के 6

0: खिलाड़ियों को जगह मिली है। प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। और आईपीएल में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, शाम के 4 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

ये दिल लगी। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में। बोल समीर के हैं, संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मोहरा और इस गीत को संगीत दिया है विजू शाह ने।

मैंने प्यार किया। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत तैयार किया है राम लक्ष्मण ने।

आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में ये है फिल्म खिलाड़ी का गीत। गीत महेंद्र दहलवी का है और संगीत है जतिन ललित का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 9वीं कड़ी।

0: श्रोतागण को मेरा नमस्कार। अब तक आपने पंचतंत्र के प्रथम दो प्रकरणों को सुना। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं तृतीय तंत्र काकोलुकियम। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये एक काक और उल्लू की कथा है। इस तंत्र में मुख्यतः पंडित विष्णु शर्मा ने ये बताया है कि पहले विरोधी रह चुकने वाले और इस समय मित्र भाव को प्राप्त शत्रुओं का विश्वास नहीं करना चाहिए।
1: वत्सगण, घने जंगल में एक बड़ा वृक्ष था। वहां मेघवर्ण नामक एक कौवा अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसी वृक्ष में अरिमर्दन नाम का एक उलूक राज भी जाति बंधुओं के साथ निवास करता था, और जब भी कोई कौवा उसके सामने आता उसे मार डालता। कौवा और उल्लू का जातिगत बैर जो था, कौवे ने सारे पक्षियों की सभा बुलाई।
2: मित्रों, हमारा शत्रु उत्कट और उद्यम संपन्न है। वो निरंतर सायंकाल आकर हमारे पक्ष का विनाश करता है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हम लोगों को रात्रि में दिखाई नहीं देता और दिन में शत्रु के दुर्ग को न पहचानने के कारण उसे मार नहीं सकते। अब हमें क्या करना चाहिए? अति शीघ्र सोच कर बताएं।
1: मंत्रियों के परामर्श से मेघवर्ण ने उज्जीवी, संजीवी, अनुजीवी, प्रजीवी तथा चिरंजीवी नाम के पांचों सचिवों से क्रमशः पूछा। सभी ने अपने अपने विचार बताए। तब मेघवर्ण ने स्थिरजीवी से पूछा,
3: तात, ये कौओं और उल्लुओं के मध्य इस प्रकार का प्राणांतिक बैर क्यों हुआ?
4: एक बार सारे पक्षियों ने अपने राजा गरुड़ के विरुद्ध कहा कि अब वो गरुड़ के स्थान पर कोई दूसरा राजा चुनेंगे। सब ने तय करके उलूक राज को अपना राजा चुना। तभी एक कौवा वहां आया। इस निर्णय से उसे बड़ी हंसी आई। उसने कहा,
5: अरे भाई, ये उचित नहीं हो रहा है। एक दीवान कराल वदन का अभिषेक किया जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इस पर विचार ही क्यों करना, जब गरुड़ हमारे राजा हैं। महान व्यक्तियों का नाम ग्रहण करने मात्र से ही कभी कभार बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे चंद्रमा का नाम लेते ही खरगोश सरोवर में सुखपूर्वक रहने लगे थे।
0: किसी वन में चतुर्दंत नाम का एक हाथियों का राजा निवास करता था। एक बार वहां सूखा पड़ा, कई सालों की अनावृष्टि हुई, कई छोटे बड़े तालाब, पोखर और सरोवर सूख गए। सभी हाथियों ने मिलकर अपने राजा चतुर्दंत से कहा,
6: देव, प्यास से बहुत से गश शिशु मरणासन हो गए हैं, कुछ तो मर भी गए हैं। इसीलिए किसी ऐसे जलाशय की खोज की जाए जिसका जल पीकर ये सब स्वस्थ हो सके।
7: हाँ, मैं जानता हूं आप सब बहुत दुखी हैं। पता नहीं इंद्रदेव का कोप कब तक चलता रहेगा।
6: आप अति शीघ्र कोई व्यवस्था करें। आप जहां पहले निवास करते थे, क्या वहां कोई समतल भूमि का जलाशय नहीं है जहां हम सब निवास कर सके?
7: यह आपने उचित

0: स्मरण कराया। दक्षिण की ओर कोई 200 कोस की दूरी पर एक स्थान में समतल भूमि पर ही एक अति विशाल जलाशय है, जो पाताल गंगा के जल से सर्वदा परिपूर्ण रहता है। आप सब वहां चलें।
1: जैसा आप कहें प्रभु, वैसे भी इतनी दूरी को तय करने में 5 दिन तो लग ही जाएंगे। हम आज ही प्रस्थान करेंगे।
2: गजाधिपति की आज्ञा से सारे गजों ने तत्काल प्रस्थान कर दिया। 5 दिन तक निरंतर चलते रहने के पश्चात उन्हें वो जलाशय मिल गया। सभी हाथी प्रसन्न थे। सबने अपनी प्यास बुझाई। सारे दिन जलाशय के किनारे खूब आनंद लिया। उस जलाशय के चारों ओर कोमल भूमि में शशकों के असंख्य बिल बने हुए थे। गजों के पैर से कुचल जाने के कारण अनेक खरगोशों के बिल टूट फूट गए। गजों के स्वच्छंद विहार से कई खरगोश मर गए। कुछ तो अधमरे से पड़े रहे। उन गजों के चले जाने पर दुखी खरगोशों ने विचार किया।
3: हम लोग अब नष्ट हो ही गए हैं, परंतु जितने शेष हैं उनकी तो रक्षा होनी ही चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये हाथियों का झुंड यहाँ प्रतिदिन आता रहेगा, क्योंकि अन्य किसी जलाशय में जल रह ही नहीं गया है।
4: ठीक कह रहे हो मित्र, हमारा विनाश सुनिश्चित है। जैसे सांप के सूंघने मात्र से व्यक्ति मर जाता है, कंस जैसा राजा हंसते हुए प्राण दंड देता है, उसी प्रकार हाथी हमें स्पर्श मात्र से मार डालता है।
3: नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो मित्र, हिम्मत नहीं हारते, कोई ना कोई उपाय अवश्य ही निकलेगा।
4: मुझे तो लगता है मित्र, हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए, अन्य उपाय रह ही क्या गया है।
3: नहीं भाई, पिता एवं पितामहों के काल से चले आए इस स्थान को सहसा छोड़ना संभव नहीं। उन्हें डराने के लिए अन्य उपाय किए जाने चाहिए, ताकि वो भयभीत होकर यहाँ फिर ना आ सकें।
4: हाँ, यदि ऐसी बात है तो उन्हें त्रस्त करने का एक उपाय है मेरे पास। हम में से कोई भी एक चंद्रमा का झूठा दूत बनकर हाथी के पास जाए और उसे रोके तो बात बन सकती है। परंतु इस कार्य के लिए वाक्पटु, रूपवान और शास्त्रों का ज्ञाता होना आवश्यक है।
3: मुझे लगता है इस कार्य के लिए आप ही योग्य रहेंगे।
4: ठीक है, ये उचित भी है। हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए इससे अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता।
2: और फिर शीघ्र गति को ही दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। गजाधिपति के समीप पहुंचने के बाद वो एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया और गज को संबोधित करके बोला,
5: अरे ओ दुष्ट गजराज, बाहर निकल! इस प्रकार निशंक भाव से तुम चंद्रमा के जलाशय में क्यों आया करते हो? आज के बाद ऐसा दुस्साहस मत करना, शीघ्र यहाँ से लौट जाओ मैं कहता हूँ।
6: कौन हो तुम?
5: मैं शीघ्रगति नाम का शशक हूँ। मैं चंद्र कुंडल में निवास करता हूँ और इस समय महाराज चंद्रमा ने मुझे दूत बनाकर भेजा है।
0: अरे भाई शशक, भगवान चंद्रमा ने क्या संदेश भेजा है, शीघ्र कहो, जिससे अविलंब उसका पालन किया जा सके।
5: कल आपके समूह के साथ आकर आपने उस जलाशय में रहने वाले मेरे कुटुंबों का वध किया है। अब आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी प्रलोभन से उस जलाशय के समीप आने का प्रयास न करें, यही चंद्रदेव का आदेश है।
0: लेकिन भगवान चंद्रदेव कहाँ हैं?
5: आपके समूह द्वारा दी गई मृत्यु से बचे शेष खरगोशों को आश्वासन देने इस समय वे जलाशय में आकर बैठे हुए हैं।
0: अरे भाई शीघ्र गति, मुझे महाराज चंद्र के दर्शन करवाओ, जिससे उन्हें प्रणाम करके मैं अन्यत्र जा सकूं।
5: ठीक है, आप एकाकी चलें, मैं आपको दर्शन करा दूंगा।
0: अच्छा।
5: अभी रात्रि का समय है, जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है मैं उसी को दिखा देता हूँ। आइए गजराज।
0: चलिए।
4: ये है महाराज चंद्र, जो

0: स्थल में समाधिस्थ होकर बैठे हैं। आप शांत होकर बिना कुछ कहे सुने इनको प्रणाम करके शीघ्र यहाँ से चले जाइए। यदि इनकी समाधि टूट गई ना तो आप पर ये क्रुद्ध हो जाएंगे।
1: ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ।
2: इसीलिए मैं कहता हूं, कभी कभी बड़े लोगों का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य का त्राण हो जाता है। और भी एक बात है, यदि मनुष्य अपने उच्च जीवन की कामना करता हो तो उसे नीच, आलसी, कापुरुष, व्यसनी तथा कृतज्ञ व्यक्ति को कभी भी राजा नहीं बनाना चाहिए। जैसे न्याय की आशा में शशक एवं कपिंजल दोनों ही विनष्ट हो जाते हैं। सुनो, मैं कभी एक वृक्ष पर निवास करता था। उसी वृक्ष के कोटर में कपिंजल नाम का एक चटक गौरा रहा करता था। सूर्यास्त हो जाने पर हम दोनों वहां आकर शास्त्र चर्चा करते। एक बार कपिंजल आजीविका के लिए अन्य चटकों के साथ धान युक्त प्रदेश की ओर चला गया। रात्रि काल तक वो वापस नहीं आया। मैं उसके वियोग में उद्विग्न होकर सोचने लगा, आज कपिंजल क्यों नहीं आया? क्या किसी पाश में फंस गया है या किसी ने उसे मार डाला? यदि वह सकुशल होता तो मेरे बिना अन्यत्र रह नहीं सकता था। कितने दिन व्यतीत हो गए, आज भी नहीं आया। अरे, उसके कोटर में ये हलचल कैसी? उसमें तो कोई घुस गया है। ये तो शशक है, उसने कपिंजल की जगह ले ली। क्या मैं उसे रोकूं? छोड़ो, अब मित्र कपिंजल क्या ही आएगा।
0: मित्र,
2: अरे कपिंजल आ गया।
0: मित्र, मैं आ गया।
2: वाह मित्र, दूसरे देश में चावल खाकर अच्छे स्थूलकाय हो गए हो।
0: अच्छा,
2: पर कहाँ रहे इतने दिन मित्र?
0: हाँ मित्र, कुटुंबजनों के साथ कुछ दिन लग गए। क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको सूचना नहीं दे पाया। परंतु मित्र, ये मेरे कोटर में कौन है? कौन? शशक? यहाँ कैसे रहते हो तुम? ये तो मेरा निवास है भैया, तुम मेरे घर के भीतर क्यों घुस आए हो? अब शीघ्र यहाँ से निकल जाओ भैया, शीघ्र निकल जाओ यहाँ से।
3: तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। क्यों तुम इस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो? कूप, तड़ाक, देवालय अथवा वृक्ष पर जीवों का तभी तक आधिपत्य होता है जब तक वह वहाँ रहते हैं। वहाँ से एक बार हट जाने के बाद पुनः उनका आधिपत्य नहीं रह जाता। मुनियों ने यही न्याय लिखा है।
0: अरे वाह वाह वाह, यदि तुम शास्त्र को इतना ही प्रमाण मानते हो तो मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ, हम लोग चलकर किसी धर्मशास्त्री से ही पूछ लेते हैं, वो जिसको देगा वही इस घर का अधिकारी होगा।
2: उन दोनों के साथ न्याय देखने मैं भी चल पड़ा। इसी बीच तीक्ष्ण दंत नाम का एक विड़ाल उनके विवाद को सुनकर मार्ग में पड़ने वाली नदी के किनारे जाकर बैठ गया और हाथ में कुश लेकर नेत्रों को बंद करके अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर एक पैर से भूमि को स्पर्श करता हुआ सूर्य की ओर मुख करके धर्मोपदेश देने लगा।
4: हे प्रभु, ये संसार तत्वहीन है, प्राण भी क्षण भंगुर है। इस संसार की माया से बचने के लिए धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य भी शाश्वत नहीं होता, मनुष्य निरंतर आसन्न है। इस कारण मनुष्य को धर्म का संचय करना चाहिए। परोपकार करना पुण्यदायक और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पापदायक होता है। हे प्रभु, सभी को सद्बुद्धि दे, जीव हत्या का निषेध कर दे।
5: अरे कपिंजल, नदी के किनारे तपस्वी महात्मा बैठे हैं, चलो इन्हीं से पूछ लिया जाए।
0: महात्मा? ये तो विड़ाल है, ये तो हमारा स्वाभाविक शत्रु है। चलो एक काम करते हैं, इनसे ना दूर से ही पूछ लेते हैं, सन निकट जाने पर कहीं ये हम पर झपट ना पड़े।

0: हे तपस्विन धर्मोपदेशक महाराज, हम दोनों के कुछ विवाद हैं, अतः आप धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय दें। आपकी दृष्टि में जो दोषी होगा उसे मारकर खा जाइएगा।
1: सज्जनों, आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अहिंसा को ही धर्म कहा गया है। जो व्यक्ति अहिंसक जीवों को मारता है वो तो नरकगामी होता है। मैं तुम लोगों को खाऊंगा नहीं, बल्कि जय पराजय का निर्णय करूंगा। परंतु मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, दूर रहने पर तुम लोगों की बात ठीक से नहीं सुन पाऊंगा, तो उचित निर्णय कैसे दूंगा? इस कारण मेरे समीप आकर विश्वास के साथ मेरे कान में स्पष्ट रूप से सच्ची बात बता दो, ताकि उचित निर्णय देकर मैं अपना परलोक सुधार सकूं।
2: हाय रे दुर्भाग्य, शशक और कपिंजल ने उस पर विश्वास कर लिया, उसके समीप जाकर गोद में बैठ गए। बस फिर क्या था, एक को पंजे में और दूसरे को दांत रूपी आरी के बीच डालकर मार दिया। इसीलिए कहता हूं, आप लोग दीवान एवं क्षुद्र स्वामी को पाकर कपिंजल और शशक की तरह एक दिन यमलोक जाएंगे।
3: उस कौवे की बात सुनकर पक्षियों ने पुनर्विचार का सोचा। उधर उल्लू अभिषेक की प्रतीक्षा में बैठा रहा। कुछ देर पश्चात पूछने पर उसे ये पता चला कि काक ने उसके राजा बनने का विरोध किया है। वो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसी दिन से दोनों का बैर प्रारंभ हो गया। इन बातों का विचार कर मेघवर्ण ने पूछा,
4: तात, इस परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है?
5: बस अब मैं छल द्वारा शत्रु का विनाश करूंगा। जैसे बकरी को ले जाने वाले ब्राह्मण से ठगों ने बकरी को छीन लिया।
4: वो कैसे?
5: किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार उन्हें अपने यजमान के घर से एक बकरी मिली।
4: अच्छा।
5: वो स्थूल होने के कारण अधिक चलने में असमर्थ थी। सो ब्राह्मण ने उसे कंधे पर उठा लिया।
4: अच्छा।
5: और अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में तीन धूर्त मिले जो भूख से व्याकुल थे। वो तीनों ब्राह्मण से उस बकरी को छीनने का विचार करने लगे। तीनों थोड़ी थोड़ी दूर पर छिप गए। एक उस ब्राह्मण के पास आकर बोला,
6: अरे विप्र, लोक परंपरा के विरुद्ध ये हास्यास्पद कार्य क्यों कर रहे हो? इस अपवित्र कुत्ते को कंधे पर क्यों ढो रहे हो? कुत्ता, कुकुट तथा चांडाल तीनों अस्पृश होते हैं, क्या ये तुम्हें ज्ञात नहीं?
7: अरे तुम अंधे हो क्या जो इस अजा अर्थात बकरी को कुत्ता बता रहे हो?
6: हे महाराज, आप क्रोधित ना हो बे। अपनी इच्छा अनुसार आप जाइए, मुझे आपके कार्य से कोई प्रयोजन नहीं है।
7: ना जाने कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, अच्छी भली बकरी उसे कुत्ता दिखाई पड़ रही है। मैं तो आगे बढ़ता हूँ।
8: अरे पंडित जी, पंडित जी, अरे रे रे रे रे रे, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? हो सकता है ये मरा हुआ बछड़ा आपका अत्यंत प्रिय हो, परंतु फिर भी इसे कंधे पर ढोना उचित नहीं है, ये तो अशुद्ध होता है।
7: लो एक और अंधा। क्यों भाई, ये बकरी गोवत्स दिखाई दे रही है और वो भी मृत, इसकी चंचलता भी नहीं देख पा रहे हो तुम?
8: भगवान भगवान, क्रोध ना कीजिए, मैंने अज्ञानवश ऐसा कह दिया, आप जो उचित समझे करें, मुझे क्या।
7: हे प्रभु, शीघ्र में इस जंगल को पार कर लूं तो ही अच्छा।
8: राम राम राम राम राम राम।
9: अरे महाराज, ये तो बहुत अनुचित कार्य कर रहे हैं आप, एक गधे को कंधे पर रखकर ढो रहे हैं। गधे के स्पर्श मात्र से आपको सवस्त्र स्नान करना चाहिए। अरे अरे, अरे इसे उतार कर फेंक दीजिए, कहीं आपको कोई देख न ले।
8: अरे ये क्या कह रहे हो भाई, जरा ध्यान से तो देखो, बकरी है,
9: बकरी है। अरे देवता, उम्र के साथ साथ क्या आपकी नजर भी चली गई?

0: अब तो वो ब्राह्मण उस बकरी को वहीं पर रखकर भाग गया। फिर तीनों धूर्तों ने मिलकर आनंद से भोग लगाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि छल एवं कपट को जानने वाले किसी को भी ठग सकते हैं। नए सेवकों के विनय भाव से, अतिथियों के वचन से, कामिनियों के रोने से और धूर्त जनों के प्रवंचनात्मक वचनों से कोई व्यक्ति भी बिना ठगाए नहीं बचा है। परंतु दुर्बल व्यक्ति भी यदि संगठित हो तो उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। जनसमूह अत्यंत दुर्जेय होता है।
1: तात, मुझे आदेश दे। आपका आदेश मेरे लिए पालनीय है।
0: बस साम दाम दंड और भेद को छोड़कर जो छल रूपी पंचम उपाय मैंने निश्चित किया है,
1: हाँ,
0: उसका स्वरूप बताता हूं।
1: बताइए।
2: मेघवर्ण ने स्थिर जीवी के अनुसार ही आचरण किया। उसने शत्रु पक्ष का विश्वास जीत लिया। स्थिर जीवी ने कहा था, शत्रु भी कभी कभी हितकारक हो जाते हैं। जैसे शत्रुओं की आपस में कलह करवा कर ब्राह्मण बच गया। किसी नगर में द्रोण नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। एक बार किसी यजमान ने उसे दो बछड़े दिए। उस ब्राह्मण ने उन बछड़ों का बाल्यकाल से ही लालन पालन किया। वे पर्याप्त पुष्ट हो गए। एक दिन एक चोर ने उसे चुराने की सोची।

0: ब्राह्मण के उन दोनों बछड़ों को आज रात मैं चुरा लूंगा। हाँ, वो ब्राह्मण सो रहा होगा। बाप रे बाप, ये विशाल काय, लाल बड़ी बड़ी आंखें, तीक्ष्ण दंत, शुष्क कपोल, पिंगल वर्ण, दाढ़ी मूछ, अत्यंत भीषण लगने वाला ये कौन है?
1: कौन हो? किधर जा रहे हो? मैं भूखा हूँ, तुम्हें खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा।
0: आप कौन है?
1: मैं सत्यवचन नाम का ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम भी तो मुझे अपना परिचय दो।
0: मैं क्रूर कर्मा नाम का चोर हूँ, इस दरिद्र ब्राह्मण के दोनों बछड़ों को चुराने वाला हूँ।
1: अच्छा, तो चलो, मैं भी 6 दिनों से भूखा हूँ और मेरे भोजन का समय भी हो चुका है। आज उस ब्राह्मण को खाकर अपनी उदर पूर्ति करूंगा। एक ही स्थान पर दोनों कार्य हो जाएंगे।
0: वो तो ठीक है, परंतु मैं बछड़ों को चुरा कर चला जाऊं, फिर आप इन्हें खाइएगा।
1: मूर्ख समझते हो मुझे? बछड़ों को चुराते हुए कहीं ब्राह्मण की नींद खुल गई तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा।
0: और अगर इसे खाते समय कोई विघ्न पड़ गया तो मैं इन बछड़ों को नहीं चुरा पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे बछड़ों को चुरा लेने दीजिए, फिर आप

0: ब्राह्मण को खा लीजिएगा।
1: नहीं, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा।
0: नहीं नहीं देव, पहले मैं बछड़ों को चराऊंगा।
1: नहीं, पहले ब्राह्मण।
0: नहीं नहीं, अगर ब्राह्मण जाग गया तो मैं बछड़ों को नहीं चरा पाऊंगा।
2: दोनों के विवाद के कोलाहल से ब्राह्मण जाग गया। चोर ने कहा,
0: हे ब्राह्मण, ये राक्षस तुम्हें खाना चाहता है।
1: नहीं ब्राह्मण, ये चोर तुम्हारे बछड़ों को चुराना चाहता है।
0: नहीं देव, ऐसा नहीं।
1: ऐसा ही है।
2: उन दोनों की बात को सुनकर ब्राह्मण चारपाई से उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया। सावधान होकर इष्ट देव को स्मरण करने लगा। मंत्र जप से राक्षस को और लाठी से चोर को भगा दिया। इसीलिए कहते हैं, कभी कभी शत्रु भी हितकारक हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिसे हम सुनेंगे अगली बार, अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: 3.2 মিটার, 1593 কিলোহার্টজ, ডিটিএইচ অডিও চ্যানেল, নিউজ অন এয়ার, মোবাইল ওয়েব ওটিটি এবং আকাশবাণী ভোপাল সে। কৃপয়া হমারে আপনি প্রসারণ কি প্রতীক্ষা। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकरोधी नवाचार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल के IIFM में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण,

पर्यावरण संतुलन एवं वन्यजीव संरक्षण पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। सरकार ने कहा है कि पिछले 4 दिन में देश की बिजली मांग में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। देश के कई भागों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि कल दिन के समय बिजली की मांग अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर 270.82 गीगावाट रिकॉर्ड की गई। धार में भोजशाला को वाग देवी मंदिर घोषित करने के बाद आज पहले शुक्रवार को हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाते हुए फैसला दिया था। आज सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दोपहर 1 बजे महाआरती हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स से कराने का आदेश दिया है। ट्रिशा की 12 मई को संदिग्ध हालात में मौत

0: वापस ले ली है और प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

दोस्तों, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के इसी सुविचार के साथ स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवांगी तिवारी। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। आप सभी के मनोरंजन के लिए होंगे गीत संगीत और आप सभी के लिए होगा काव्य पाठ। आइए शुरुआत करते हैं पहली महत्वपूर्ण चर्चा से, जिसका विषय है विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे सामान्यतः CSIR कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्था है। ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। उस समय भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को संगठित रूप देने और उद्योगों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। महान वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर ने इसकी स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। CSIR का मूल उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के माध्यम से देश के आर्थिक औद्योगिक और सामाजिक विकास को गति देना है। यहाँ संस्था नई तकनीकों के विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक समस्याओं के समाधान तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती रही। स्वतंत्रता के बाद भारत में वैज्ञानिक ढांचे को मजबूत बनाने में CSIR की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आज ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक अनुसंधान संस्थाओं में गिनी जाती है। CSIR के अंतर्गत देश भर में अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र कार्य करते हैं। ये संस्थान औषधि निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस, पर्यावरण, ऊर्जा खनन, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। दोस्तों, CSIR ने भारत में कम लागत वाली दवाओं और तकनीकों के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया है। हल्दी और बासमती चावल के पेटेंट विवाद में इस संस्था ने भारतीय पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त जल शुद्धिकरण, पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा ग्रामीण तकनीकों के विकास में भी CSIR का योगदान उल्लेखनीय रहा है। COVID-19 महामारी के दौरान भी इस संस्था ने परीक्षण तकनीक, दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधानों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। यह संस्था केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं है बल्कि युवाओं और शोधार्थियों को भी प्रोत्साहित करती है। CSIR UGC नेट परीक्षा देश की प्रमुख शोध परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके माध्यम से जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। आइए अब सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अक्सर फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी हिमेश रेशमिया की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था हिमेश रेशमिया ने। आइए ले चलते हैं कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण चर्चा की ओर, जिसका विषय है विश्व जैव विविधता दिवस। दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों और

0: प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की विविधता। ये केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व का आधार भी है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके बाद 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि यदि जैव विविधता नष्ट होती रही तो मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। जैव विविधता तीन प्रमुख स्तरों पर होती है, अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। अनुवांशिक विविधता किसी एक प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले भिन्न गुणों को दर्शाती है। प्रजातीय विविधता विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों की संख्या को दर्शाते हैं, जबकि पारिस्थितिकीय विविधता जंगल, नदी, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ जैसे विभिन्न प्राकृतिक तंत्रों की विविधता को बताती है। आज के समय में जैव विविधता कई खतरों का सामना कर रही है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसके मुख्य कारण है। दोस्तों, अनेक जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यदि समय रहते संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। जैव विविधता का संरक्षण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन, दवाइयाँ, स्वच्छ वायु, जल और जलवायु संतुलन सीधे प्रकृति पर निर्भर है। मधुमक्खियाँ परागण करती हैं, वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, वन वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सुरक्षा भी है। दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण संगोष्ठियाँ, पर्यावरण रैलियाँ, शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि जैव विविधता पृथ्वी की अमूल्य धरोहर है। इसका संरक्षण केवल सरकारों का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी मानव जीवन सुरक्षित और संतुलित रह सकेगा। अभी हम बात कर रहे थे विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में सुनवाते हैं आपको नीलम प्यासी से काव्य पाठ।
1: आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा हृदय से नमस्कार। मैं अपनी बात गजल के माध्यम से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पेश है आप सभी के सम्मुख गजल की कुछ पंक्तियाँ। वीरानी अंधेरी गलियों को मुस्कुरा के पार कर दी है, वीरानी अंधेरी गलियों को मुस्कुरा के पार कर दी है, ये बात अलग है कि वो उजालों से प्यार करती है। वीरानी अंधेरी गलियों को मुस्कुरा के पार करती है, ये बात अलग है कि वो उजालों से प्यार करती है। उदासी के मौसमों में उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, उदासी के मौसमों में उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, सुकून से मौसमों के बदलने का इंतजार करती है। सीख लिया है उसने खुद के साथ रिश्ता निभाना, सीख लिया है उसने खुद के साथ रिश्ता निभाना, दुनिया के खोखले सब रिश्ते दरकिनार करती है। शिकायत नहीं करती, शिकायत नहीं करती, सब कुछ चुपचाप सहती है, शिकायत नहीं करती, सब कुछ चुपचाप सहती है, दिन रात कोशिशें करती है और लगातार करती है। और अंतिम शेर सुनाऊंगी कि प्यार वफा की दुनिया में वो वक्त लगा के जाती है, प्यार वफा की दुनिया में वो वक्त लगा के जाती है, वो जब भी प्यार करती है तो बेशुमार करती है। एक अन्य गजल और उसकी कुछ शेर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। नजरों के दायरे में सब कुछ नहीं आता, नजरों के दायरे में सब कुछ नहीं आता, जमी आती है तो आसमान नहीं आता। नजरों के दायरे में सब कुछ नहीं आता, जमी आती है तो आसमान नहीं आता, दुनिया देखने हमारी खुद की नजरें हैं, दुनिया देखने हमारी खुद की नजरें हैं, तुम्हारी नजरों से हमें वो नजर नहीं आता। कुछ अन्य शेर सुनाऊंगी। दूर हुए तुमसे तो खुद से मिलना हुआ, दूर हुए तुमसे तो खुद से मिलना हुआ, खोखले हैं जिन्हें तन्हा रहना नहीं आता, और जिंदगी के खेल में वो हमेशा पीछे रहे, जिंदगी के खेल में वो हमेशा पीछे रहे, वो जिन्हें गिरकर फिर उठना नहीं आता। कुछ अन्य शेर सुनाऊंगी कि सच है उससे बहुत कुछ मांगने जाती हूँ, सच है उससे बहुत कुछ मांगने जाती हूँ, मिलके उससे फिर कुछ दूसरा ख्याल नहीं आता। फकीरी का नूर हमारे चेहरे पर बिखरा है, फकीरी का नूर हमारे चेहरे पर बिखरा है, बनावटी जिंदगी जीने में अब मजा नहीं आता। हर रोज परेशानी के बहाने बहुत होते हैं, हर रोज परेशानी के बहाने बहुत होते हैं, पाकर के कुछ खोने के बहाने बहुत होते हैं, हर रोज परेशानी के बहाने बहुत होते हैं, पाकर के कुछ खोने के बहाने बहुत होते हैं, दर पर किसी की औकात देख कर जाते हैं, दर पर किसी की औकात देख कर जाते हैं, गरीबी को मौत के बहाने बहुत होते हैं, बैठे हुए चलते हुए खड़े खड़े सो जाता, बैठे हुए चलते हुए खड़े खड़े सो जाता, थकावट को नींद के

0: बहुत होते हैं, बैठे हुए, चलते हुए, खड़े खड़े सो जाता, थकावट को नींद के बहाने बहुत होते हैं, और पस्त पड़ जाता बदन ईमान की रोटी जुटाते, पस्त पड़ जाता बदन ईमान की रोटी जुटाते, मेहनत को कामयाबी के बहाने बहुत होते हैं। और अंतिम शेर इस गजल का, जंगलों के पेड़ों को कौन खाद पानी देता, जंगलों के पेड़ों को कौन खाद पानी देता, जिंदगी को जीने के बहाने बहुत होते हैं। कि बात कुछ ऐसी हो कि दिल पिघलने लगे, बात कुछ ऐसी हो कि दिल पिघलने लगे, हम ठहरे सोचें और फिर बदलने लगे, बात ऐसी हो दिल पिघलने लगे, हम ठहरे सोचें और फिर बदलने लगे, फरेबी दुनिया से हमारा दिल जो भर गया, फरेबी दुनिया से हमारा दिल जो भर गया, महफिलों में गजलों में सच सच उगलने लगे, औरतों की ताकत से डरी बैठी है दुनिया, औरतों की ताकत से डरी बैठी है दुनिया, वजूद दबाने को तो उनके ख्वाब कुचलने लगे। कुछ अन्य शेर सुनाऊंगी कि आंखों से तू झांकता शब्दों से झलकता है, आंखों से तू झांकता शब्दों से झलकता है, तेरे संग रहकर हम तुझी सा महकने लगे, उम्मीद और भरोसे से बरकरार है दुनिया, उम्मीद और भरोसे से बरकरार है दुनिया, जो भरोसे में कमी हुई तो कदम बहकने लगे, इबादत इतनी गहरी हो कि तू खुदा बन जाए, इबादत इतनी गहरी हो कि तू खुदा बन जाए, सब छोड़कर कदम उसकी ओर ही बढ़ने लगे। एक अन्य गजल और उसके कुछ शेर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। कि उसकी आंखों में नामालूम कितना कुछ समाया होगा, उसकी आंखों में नामालूम कितना कुछ समाया होगा, न जाने किन रास्तों से गुजर कर वो यहाँ आया होगा, उसकी आंखों में नामालूम कितना कुछ समाया होगा, न जाने किन रास्तों से गुजर कर वो यहाँ आया होगा, आज बहुत रातों के बाद वो चैन की नींद सोया है, आज बहुत रातों के बाद वो चैन की नींद सोया है, उसने आज किसी की आंख का काजल चुराया होगा। शेर पढ़ती हूँ कि झूठ की दुनिया से उनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, झूठ की दुनिया से उनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, सच बोलने में उसका ईमान थोड़ा डगमगाया होगा, गर इस वहम की दुनिया के तुम सारे वहम उतार दो, गर इस वहम की दुनिया के तुम सारे वहम उतार दो, तो दिख रहा हर एक शख्स अपना नहीं पराया होगा, अंधेरी दुनिया में फिर आंखों का काम क्या रह जाता है, अंधेरी दुनिया में फिर आंखों का काम क्या रह जाता है, सुनाने को अपनी आप बीती वो जोर से चिल्लाया होगा, एक शख्सियत को उसने आज औरत मान लिया है, एक शख्सियत को उसने आज औरत मान लिया है, उसे बहुत गहरे अपनेपन से किसी ने अपनाया होगा, और दुनिया में आज वो इंसान धोखे पर धोखे खा रहा है, दुनिया में आज वो इंसान धोखे पर धोखे खा रहा है, जिसने खुद को समझने में बहुत कमजोर लगाया होगा, उसकी आंखों में नामालूम कितना कुछ समाया होगा।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नीलम प्यासी से ये काव्य पाठ। आइए कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे हाईवे फिल्म से यह प्यारा संगीत, जिसमें आवाज़ थी एआर रहमान की, संगीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था एआर रहमान ने। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में दे देते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रोजगार सूचना। रेलवे आरआरबी योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3। पद की संख्या है 6,565। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 30 जून 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। शैक्षणिक योग्यता बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप इनके आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते सुनवा देते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान फिल्म से प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। और इसी के साथ समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपनी मित्र शिवांगी तिवारी को। नमस्कार।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत आपके लिए हमने चुना है युवा फिल्म से। मधुश्री और एआर रहमान की आवाज़ है। गीत लिखा है महबूब ने, संगीत है एआर रहमान का।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे जिंदा दिल में लता मंगेशकर, शैलेंद्र महेंद्र कपूर को, गीत लिखा था वर्मा मलिक ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं कटी पतंग फिल्म में किशोर कुमार को। आनंद बख्शी साहब ने ये गीत लिखा है और आर डी बर्मन ने संगीत दिया है।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं खामोशी फिल्म में जगजीत सिंह को। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत है जगजीत सिंह का।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं काश आप हमारे होते, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत है, लिखा है समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए

0: एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल के IIFM में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट आयोजित किया गया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन एवं वन्य जीव संरक्षण पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए ये परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स से कराने का आदेश दिया है। ट्विशा की 12 मई को संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। इस मामले में पति समर्थ सिंह ने अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। सरकार ने आज सूचित किया है कि बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित की गई थी। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से

0: फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा

0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
1: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
1: बिल्कुल सही।
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
1: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
1: जी,
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी,
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता यह है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?

0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
0: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की

0: तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: अजी सुनिए।
3: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
3: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे, इसको भी डालो।
3: हाँ हाँ,
2: ये देखो
3: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये, ये पौधा कितना हाँ। छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
2: प्यारा लग रहा है।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
3: हाँ।
2: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य

0: ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: आह, पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर

0: राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
4: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 आकाशवाणी भोपाल पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शाम के 6:30 हैं, आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं कुछ फिल्मी गाने। दिल क्या करे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ है, आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और जतिन ललित ने संगीत से संवारा है।

0: फिल्म संगीत का अगला गीत क्या कूल हैं हम, कुणाल गाजावाला के अनु मलिक की आवाज है, गीत लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का।
1: क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, ने बड़ा है दम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम,

0: Kja coole hun, kja cool he hum. Kja coole hun, kja cool he hum. Hum never a het hum. Kja coole hun, kja cool he hum. Kja coole hun, kja cool he hum. Hum.
1: और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं क्या यही प्यार है, सोनू निगम की आवाज़ है, साजिद वाजिद ने इसका संगीत तैयार किया है।

और लीजिए अब सुनिए प्यार किया तो डरना क्या। अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत लिखा है समीर ने, संगीत है जतिन ललित का।

और लीजिए कार्यक्रम के अंत में बल्ला क्या बात है, इस फिल्म में आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत से संवारा है रोशन ने।

0: Nasansani. Nautejna. Nashor din ra. Nahi ahankar. केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी विजन समाचार दिल्ली से होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के

अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव

0: में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और DGP से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए नजर डाल लेते हैं आज के शेष और कल आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8 बजे ग्राम सभा आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से और रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिएगा सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 और 9:15 पर। 9:30 खेल जगत में सुनिएगा देवेंद्र खुराना की वार्ता U18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026। 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित राजन साजन मिश्र का राग यमन में ख्याल गायन। ये तो थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र कल प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा नमस्कार भोपाल। 8:30 फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। लोक संगीत में रमा दुबे के गाए बघेली लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे 9:15 पर। 9:30 कार्यक्रम होगा इनसे मिलिए। इसमें सुनिएगा प्रख्यात कवि गीत चतुर्वेदी से शुभम तिवारी की बातचीत। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम होगा 10:05 पर। 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में पंडित M. वेंकटेश कुमार का राग भैरव में ख्याल गायन होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से 11:00 सुनिए फोन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:00 आपकी फरमाइश और 12:30 संग्रहालय से पंचतंत्र का भाग 10 आपको सुनवाया जाएगा। 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर

व श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होंगे। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 बजे आपकी फरमाइश का आनंद लीजिएगा।

शाम 6 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का भाग 4। 6:30 बजे फिल्म संगीत, 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा ग्राम सभा, इसमें सुनिएगा बुंदेली लोकगीत। 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा उड़ान, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8 बजे सुर्खियों में। 8:15 पर फिल्म संगीत, 9:30 विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंगन सेरी सी माधवन का कर्नाटक गायन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से हम आपको सुनवाएंगे। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि आप 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से आज सुनेंगे ग्राम सभा में आपकी पाती आपके फिल्मी गीत, आपकी फरमाइश पर ये कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर। और त्रिशा शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश, प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकरोधी, नवाचार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो चुका है और अगले 5 साल में इसे फिर से दोगुना करने का लक्ष्य है।
4: यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे।

0: श्री मोदी इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल के IIFM में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की GDP का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है।
1: हमने 2014 में देश में 24 रामसर साइट्स थी, उसको बढ़ा करके अब 99 किया और बहुत जल्दी हमारी 100 साइट जो है रामसर साइट्स हो जाएंगी। इंदौर तो वेटलैंड सिटी ही डिक्लेयर हुआ है। ये जो वेटलैंड है ये भी हमारी बायोडायवर्सिटी की समृद्ध धरोहर ही नहीं बल्कि हमारे जल संरक्षण और जलवायु संतुलन और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान की जानकारी भी दी।
2: हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है, हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं इसको प्रतिबद्धता के बलबूते तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक लगभग 3,000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्वार, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्यप्रदेश नंबर 1 पे है।
0: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने आज जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया जिसमें पहले सिर्फ 8 डिब्बे थे। इस मौके पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण और जैसलमेर में नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 2 दिन के प्रदेश दौरे पर हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जाएंगे। दौरे से पहले श्री सिंधिया ने समर्थकों से अपील की कि उनके स्वागत में कोई पेट्रोल डीजल वाहन न जलाए और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ईंधन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 जून को 12 राज्यों की 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिसमें प्रदेश की 3 सीटें भी शामिल हैं। इन तीनों सीटों पर बैठे सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है जिसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। तुषार शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह आज शाम जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। इससे पहले समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत की याचिका भी वापस ले ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने आज तुषार का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की अगुवाई में भोपाल एम्स में होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और तब तक पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने CBI जाँच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। धार में भोजशाला को वागदेवी का मंदिर घोषित करने के बाद आज पहले शुक्रवार को हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाते हुए यह फैसला दिया था। आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दोपहर 1 बजे महाआरती हुई। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और करीब 1800 सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने अशोकनगर कलेक्टर को चंदेरी के गाड़िया लोहार परिवारों को जल्द आवासीय पट्टे दिलाने के निर्देश दिए हैं। गाड़िया लोहार समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मिलकर अपनी मांग रखी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी पात्र परिवारों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस साल से क्लर्क और स्टोरकीपर पदों के अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन केंद्र पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में ESIC के तहत पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवार को अब कैशलेस आयुष चिकित्सा का फायदा मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग और आयुष विभाग के बीच एक समझौता हुआ है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में ये MOU साइन किया गया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। वहीं निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट रहा। इसके अलावा 25 मई से नौतपा शुरू होगा और उसके बाद गर्मी और भी बढ़ने की आशंका है। अब कुछ

समाचार संक्षेप में। आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत ने आज शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे मध्य क्षेत्र कार्यकर्ता विकास वर्ग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सदुपयोग पर बल दिया है। बैतूल कलेक्टर ने आज रानीपुर पुलिस थाना म्यूजियम में संरक्षित ऐतिहासिक सामग्री एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की। झाबुआ कलेक्टर आज राणापुर विकास खंड के ग्राम समोई में संतृप्ति शिविर में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इंदौर इच्छापुर हाईवे निर्माण का निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राजगढ़ जिले की 23 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों के लिए जारी भर्ती की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। शहडोल के केशवाही वन परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। खंडवा में आगामी त्योहारों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। CBSE ने 12वीं की आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में प्रदेश के 6 खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम में प्रदेश की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और IPL में अब से कुछ देर में हैदराबाद में सनराइजर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट, मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर। और तुषार शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश, प्रदेश सरकार ने मामले की जाँच CBI को सौंपी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 होने को हैं। प्रस्तुत है ग्राम सभा।

जल जंगल और जानवरन की एक ही धरती माता है, कीट पतंगा बिरछा नदियाँ, सगी बहन और भ्राता है, मिल जुड़कें सब रहें संग में, मिल जुड़कें सब रहे संग में, सो पर्यावरण मुस्काता है, तितली चिड़िया पार टोरियाँ, तितली चिड़िया पार टोरियाँ, मन भर भर के दाता हैं। अब भैया रोके हैं जब अंशु बहन आज काय को जब कविता सुना रही, तो भैया हरो इसे सुना रहे कि आज 22 जून को पूरो विश्व 22 मई को पूरो विश्व मनात है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब जो जैव विविधता का है, जो हम बता हैं, पहला राम राम पहुंच जावे हमारे सभी भैया बहनन को और सबकी राजी खुशी की हम ईश्वर से कामना करत हैं। और मुतकिलो जानकारियाँ लेके हम आज आपकी ग्राम सभा लेके आ गए हैं, और संगे आज शुक्रवार है जो तो आप जानते ही हो, सो चिट्ठियाँ सोई ले आए हम आप उनकी फरमाइश की फिल्मी गीत सुना दे खिलाने। अब अपन बात कर रहे थे जैव विविधता पे, का होते भैया हरो कि पर्यावरण बचावे के लाने हम सभी को अपनो अपनो योगदान देवे की बहुत ही जरूरत है। कैसे भैया हरो, ई धरती पे पाए जावे वाले छोटे से छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदी पहाड़, सभी कछु ई पर्यावरण को निर्माण करते हैं और हम सभी ई पर्यावरण पे निर्भर होते हैं। ई के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मनो अत्यधिक आधुनिकता की दौड़ में हमने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाओ है, जिसे जैव विविधता को नुकसान पहुँचो है। जो हमारे जीवन को आधार है वही को हमने मिटा दो है अपने आधुनिकता की दौड़ में। सो ई के प्रति जागरूक करवे के लाने, ये बचावे के लाने आज हम जैव विविधता को बचावे के लाने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मना रहे हैं, जिसे हम समझ सकें कि हमें ऐसे कौन से प्रयास करने हैं कि हम अपने पर्यावरण को, पर्यावरण में पाए जाए वाले

0: सभी इकाइयों को नुकसान ना पहुंचावे, उन्हें सुरक्षित कर सकें। हमें अपने मोड़ी मोड़न को पेड़ पौधन के महत्व के बारे में जानवो बतावो जरूरी है, जिसे भी वृक्षारोपण के संगे उन्हें बड़ो होवे तक उनकी रखवारी कर सकें। कैसे एक पेड़ की जड़न में हजारन प्रकार के सूक्ष्म जीवन को निवास होते हैं, जो जैव विविधता के लाने बड़ो महत्वपूर्ण होते, बड़ो हिस्सा होते। तो जहाँ हम जैव विविधता की आज बात कर रहे थे, कुछ और भी जानकारियाँ हम लेके आए भैया रो, जैसे अपनी सरकार मुतकिलो योजनाएं चलाते हमारे किसान भैया के फायदा के लाने, ऐसे ही एक योजना है डिजिटल कृषि मंडी योजना, जो एक ऐसी योजना है भैया रो जो किसानन को सीधे ऑनलाइन मंडी से जुड़त है। इको उद्देश्य एक देश एक कृषि बाजार, पूरा भारत एक मंडी बन जाए करवो है। योजना को मकसद बिचौलियन को खत्म करवो, बढ़ती दलाली और कमीशन को खत्म करवो है, आप और उनको सही दाम दिवावो है, पारदर्शिता लावो है आप लोग की फसल के बीच और आप लोग के उत्पादन के बीच, आपकी कमाई के बीच, और आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करावो है। और संगे संगे फायदा इमें और का है भैया हरो, 15-25% इमें आपको ज़्यादा दाम मिलत है और देश भर को बाजार उपलब्ध होते हैं, आपकी उपज देश भर में बिक सकत है, तुरंत पेमेंट मिलत है, कोनो उदारी को झंझट नहीं रहते है, मंडी भाव पतो चलत रहते है, SMS के माध्यम से ये आप जान सकत हो। और संगे संगे भैया रो तौल चोरी होवे से बचत है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा हो कोटा होत है, जिसे कि कैमरा रिकॉर्डिंग हो जाते हैं, जिसे कि कोनो भी धांधली होवे से हमारे किसान भैया हरे बच जावे। और भैया रो आगे बढ़त है, बढ़िया हो रही है बुंदेली समाचारन की, सुबह सुना देते हैं।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से मुलाकात करी। दोनों देशों ने आतंक रोधी, नवाचार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौता करे। श्री मोदी ने कही कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुनो हो चुको है और अगले 5 साल में ये फिर दोगुनो करवे को लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल 19वें रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जो मेला देश के 47 स्थानों पर एक संगे आयोजित हुई है। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागन में काम संभालें। श्री मोदी ई मौका पे युवाओं को संबोधित सोई कर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पे आज भोपाल के IIFM में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्री समिट भाव। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत करी। केंद्रीय मंत्री ने कही कि देश की GDP को आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ो है और ये बचावो बहुत जरूरी है। उतई मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ो ऐलान करत भाई कही कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं, ताकि घायल जानवरों को भोपाल ना लावे की जरूरत पड़े। धार में भोजशाला खो बागदेवी मंदिर घोषित करवे के बाद आज पहला शुक्रवार को हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना करी। हाई कोर्ट ने 15 मई को शुक्रवार की नमाज पे रोक लगा था, जो फैसला दो हुआ तो आज सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दोपहर 1 बजे महाआरती भई। माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहो और करीब 1800 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के ई फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा को दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स से करावे को आदेश दो है। ट्विशा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत भई। मामले में पति समर्थ सिंह ने जमानत अर्जी वापस ले ली है। उतई सास और पूर्व जज गिरीवाला सिंह को भी कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पे नोटिस जारी करो है। अब मामले की अगली सुनवाई 25 मई को दोपहर 2:30 बजे हुई है। उतई दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने ई मामले की जांच CBI को सौंप दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरा पे हैं। उनने आज जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लाने 20 डब्बन वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करो, जी में पहले सिर्फ 8 डब्बा हते। ई मौका पे उनने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण और जैसलमेर में नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स को वर्चुअल उद्घाटन भी करो। वैष्णव ने कही कि राजस्थान के लाने 10,000 करोड़ रुपया से अधिक को बजट रखो गए है। केंद्रीय संचार मंत्री जो

0: सिंधिया आज दो दिन के प्रदेश दौरा पे हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर, शिवपुरी और गुनाचे हैं। दौरा से पहला श्री सिंधिया ने समर्थकन से अपील करी कि उनके स्वागत में कोनों पेट्रोल डीजल को वाहन ना लाएं। उनने कही कि मौजूदा हालात में ईंधन बचाव हम सभी की जिम्मेदारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज से 24 मई तक प्रदेश के 7 जिलों के दौरे पे हैं। वे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, निवाड़ी, छतरपुर और सतना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले हैं। हर जिला में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करे जा रहे हैं। इनमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और आगामी रणनीति की जानकारी दी जाए है। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के लाने नए नियम लागू करवे जा रही है। इसके लाने आम जन से सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 को मसौदा gate.mp.gov.in पे उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या हितकारक 5 जून 2026 तक अपने सुझाव sogard1@mp.gov.in पर ईमेल कर सकत है। जापान में होवे वाले अंडर 18 एशिया कप के लाने भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इमें गोलकीपर आयुष रजक, डिफेंडर अंश बहोत्रा और करण गौतम, मिडफील्डर अवि माणिकपुरी और फॉरवर्ड सिद्धार्थ बैन और गाजी खान शामिल हैं। प्रदेश में नौतपा पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दो है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी करी है। उतई निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू को रेड अलर्ट रहो है। इसके अलावा 25 मई से नौतपा शुरू हुई है और उसके बाद गर्मी और भी बढ़ने की आशंका है। जी हते आज के बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप को पता है कि आज है दिन शुक्रवार और आज होते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतन को कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। सो हम चिट्ठिया लेके बैठे हैं और जब पहली चिट्ठिया हमें आई है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु दासु, अर्नव आनंद, सत्यम आनंद की। इन सभी भैया बहन ने सुनवो चाहो है काली टोपी लाल रुमाल को जो गीत जिखो संगीत से सजाओ है चित्रगुप्त ने, इखो लिखो है मजरू ने और इखो गाओ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। सुनत है जो मीठो सा गीत।

भैया रो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जो दूसरी चिट्ठियाँ हमारे हाथ में है, जहाँ हमें आई है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा बेबी, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं पूरा माखीजा कुटुम्ब। इन भैया बहन ने सुनबो चाहो है गोलमाल फिल्म को जो गीत जिये किशोर कुमार ने गाओ है, इको संगीत से सजाओ है आर डी बर्मन ने और इके गीतकार हैं गुलजार।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: भैया अरो, कार्यक्रम में वापस आते हैं अंतराल के बाद, और चिट्ठियां हमने एक और ले ली है अपने हाथ में, जहां हमें आई है आर्यनगर कोहमा भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मॉरिस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल की। इन भैया बहनों ने सुनबो चाहो है सौदागर फिल्म को जो गीत जिए लता मंगेशकर ने गाओ है, और एक संगीत से सजाओ है रविंद्र जैन ने, और ये लिखो भी रविंद्र जैन ने है। आओ सुनते हैं जो गीत।

भैयारो, इतनो मीठो गीत सुन के आगे बढ़त हैं। और एक और चिट्ठिया है जो भी खूब अच्छो मीठो सो गीत हमारे पास है। फिल्म स्वयंवर है और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है और इको पसंद कर भेजो है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद कुमार वर्मा ने। आओ सुनते हैं जो एक और मीठो सो गीत।

भैया रो कार्यक्रम में आगे बढ़ते और कुछ सूचना आपके लाना है वह हम आपको दे देते हैं। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 24 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम को प्रसारण करो। जो है ई हेलो ग्राम सभा के लाने विषय है ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य। ई कार्यक्रम में जो श्रोता भैया बहने अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं को समाधान चाहते हैं वे दिनांक 24 मई 2026 को शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 और 2660903 पे फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर फिर कौन सुन लेवे। दिनांक 24 मई 2026 को संजावेरिया 7:30 बजे से 8 बजे लो। फ़ोन नंबर है 2660902 और 2660903 और भोपाल से बाहर के श्रोताओं के लाने एसटीडी कोड है 0755। जहती सूचना फिर का हम एक चिट्ठियाँ ले लेते हैं और जहाँ हमें आई है जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल गणेशलाल जायसवाल शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश बिहारी जायसवाल। इन सभी भैया बहनों ने सुनबो चाहो है सनम पिक्चर को जो गीत जिए गाओ है कुमार शानू और अलका याग्निक ने और इनके संगीतकार हैं आनंद मिलन और इको लिखो है समीर ने। तो सुनते हैं जो एक नए जमाने को गीत।

भैया रो, कार्यक्रम में अपन आगे बढ़त हैं। और जैसे कि अपन जैव विविधता की बात कर रहे थे, प्रकृति की बात कर रहे थे, पर्यावरण की बात कर रहे थे, तो भाग्य से आज एक चिट्ठी आई है हमारे पास नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन की। इन सभी भैया बहनों ने कछु ऐसो ही गीत की फरमाइश लिख भेजी है। फिल्म को नाम है एक बार फिर, और इखो गाँव है भूपेंद्र व अनुराधा पौडवाल ने, और इखो संगीत से सजाओ है रघुनाथ सेठ ने, और ये लिखो है विनोद पांडे ने। सुनत है जो बहुत ही मीठो सो गीत।

भैयारो, सासू मासू जो गीत बहुत ही मीठो होतो, चिड़िया पक्षियन की बातें हती। अब जल्दी से कल के कार्यक्रम सुन लो, कल भुनसा रहे कृषि चर्चा में सुनियो वर्मी कंपोस्ट बनावे की आसान विधि। वार्ताकार हुई है डॉक्टर पीयूष कुमार पाठक और संजय बिरिया हुई है अपनी ग्राम सभा से, वो भी सुनियो। अब दो अपनी अंशु बहन को आज्ञा और स्वीकारो हमारी नेह और स्नेह भरी। राम राम।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा। यह आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज की चर्चा का विषय है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सचदेवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: प्रोफेसर सचदेवा, साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोड्यूलिडेस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। ऐसे समय में जब भारत और यूरोपीय संघ 2027 तक की शुरुआत तक अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं, साइप्रस इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, विशेष रूप से तब जबकि वर्तमान में वह यूरोपियन संघ परिषद का अध्यक्ष है।
2: ये उनकी जो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो EU प्रेसिडेंसी की यूरोपियन काउंसिल की वो 6 मंथ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, उसमें हर 6-6 महीने के बाद वहां पे जो है नया कंट्री जो है उसका प्रेसिडेंसी कंट्री बनता है। तो अभी इस साल के पहले 6 महीने की प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास है, तो उसका मतलब यह है कि जितनी भी मीटिंग्स वहां पे यूरोपीय संघ की जो होती है वहां पे काउंसिल पे, उनकी जो अध्यक्षता है उन मीटिंग्स की, सब वो प्रेसिडेंसी कंट्री करता है। और उसका हर प्रेसिडेंसी कंट्री अपना एक एजेंडा लेके आता है कि मैं इस 6 महीने के अंदर ये चीजें जो है वो कोशिश करेंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक। तो वैसे तो ये रूटीन मैटर है, हर 6-6 महीने में कंट्री जैसे बदलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे संबंध हैं वो यूरोपीय संघ के साथ बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं पिछले कई सालों में। और अभी हमने देखा था जब जनवरी में भारत में यूरोपीय संघ और भारत की जो समिट मीटिंग हुई थी, उसके बाद से नया रोडमैप हमारा 2030 का उनके साथ उसको अपनाया गया है। और जैसा आपने कहा कि मुक्त व्यापार जो बात है ट्रेड एग्रीमेंट की, उसके नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गए हैं, फॉर्मेलिटीज वहां पे चल रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी है उसको क्रियान्वित किया जाए और उसमें जो भी प्रेसिडेंसी कंट्री है निश्चित तौर से उनका एक रोल रहता है, उसको थोड़ा आगे पुश जल्दी कर सकते हैं, तो उसमें साइप्रस भी अपनी भूमिका उसमें अदा कर सकता है। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री का भी दौरा भी था यूरोप का, जिसमें 4 यूरोपीय देशों में गए थे, उसमें भी अपने संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं उन देशों के साथ आगे बढ़ाए हैं। और उसी कड़ी में मुझे लगता है ये जो अभी साइप्रस के राष्ट्रपति डोलिडिस का यहाँ पे जो दौरा है उसी

0: की श्रृंखला में मुझे लगता है कि एक एक देश के साथ हम
1: जी
0: बिल्कुल अपने संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं।
1: जी
0: और आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री भी साइप्रस का दौरा करके
1: जी
0: 2025 में
1: बिल्कुल
0: वहां पे आए थे, तो संबंध काफी करीब हुए हैं पिछले कुछ सालों में।
1: प्रोफेसर सचदेवा, इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछूं, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत साइप्रस की मित्रता और भारत ईयू एफटीए में साइप्रस की भूमिका के बारे में क्या कहा।
2: भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान

0: पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। आज जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस संयुक्त प्रेस वक्तव्य में एक और घोषणा की कि भारत और साइप्रस अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया है और अगले 5 वर्षों में साइप्रस में भारत में होने वाले निवेश को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
0: फ्रेंड, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
1: तो प्रोफेसर सचदेवा, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना और हम भी बात कर रहे थे कि दोनों देशों ने इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है उसको दुगना करने का एक निर्णय लिया है और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर एलिवेट करने का जो उन्होंने एक निर्णय लिया है, इन दोनों ही फैसलों पर आप क्या सोचते हैं?
2: इनफैक्ट ये एक काफी सोची समझी नीति मुझे लगता है भारत की है यूरोप के प्रति, जो काफी अभी बिल्कुल उभर कर आ रही है। आप जानते हैं कि हमारा यूरोपीय संघ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 से है और पहले हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कुछ बड़े देशों के साथ होती थी, जैसे फ्रांस के साथ थी, जर्मनी के साथ थी और यूके जब उनका हिस्सा होता तो उनके साथ थी। वो साझेदारी अभी भी है। पिछले कुछ सालों में हमने कई और देशों के साथ पार्टनरशिप किया स्ट्रेटेजिक, जैसे इटली के साथ किया, ग्रीस के साथ किया, पोलैंड के साथ किया और अभी जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो दो और पार्टनरशिप्स को, नीदरलैंड्स को, स्वीडन को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। उसी कड़ी में अभी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइप्रस के साथ है उसको भी एलिवेट किया गया है और उसके साथ डिफेंस का एक नया रोड मैप भी इनके साथ तैयार किया गया है, क्योंकि यूरोपीय संघ के अंदर यह है कि कॉम्पिटेंसीज कुछ चीजों की जो है यूरोपीय संघ के पास है, बाकी चीजों की, क्योंकि सब अलग अलग इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज हैं, तो उन सब चीजों की बात आप उस देश के साथ कर सकते हैं। तो हम यूरोपीय संघ के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ हमारी साझेदारी है, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट देश हमको लगता है उनके साथ हम अपने रिलेशंस को एलिवेट कर रहे हैं और जैसे इंडिया नॉर्डिक समिट में था तो हमने एक समूह के साथ भी वहां पे उनके साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं। तो क्योंकि साइप्रस जो है हालांकि एक छोटा सा टापू है, छोटा सा देश है, लेकिन भारत की दृष्टि में मुझे लगता है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री पिछले साल भी गए थे वहां पे और अभी वहां के राष्ट्रपति यहां पे हैं और इस रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया है, इसका मतलब यह है कि हम सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जगह पे स्थित हैं और मेडिटेरेनियन के अंदर इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है और जिस तरीके से निवेश की बात है क्योंकि वहां के जो नियम कायदे कानून है मॉरिशस की तरह काफी खुले हैं, उसकी वजह से वहां से निवेश चाहे वो साइप्रस का हो चाहे दूसरे देशों के व्यापारी हो वो भी साइप्रस के थ्रू काफी निवेश दूसरे देशों में करते हैं। तो उसी का कारण है कि काफी निवेश वहां से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा हमारे टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से साइप्रस है और अगर उनके साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं और एक पूरा अच्छा प्लान बनता है तो निश्चित तौर से वहां से निवेश और भारत की तरफ अधिक आ सकता है और साइप्रस जो हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक गलियारा की हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए भी जो साइप्रस है काफी भूमिका अदा कर सकता है भारत और यूरोप को जोड़ने के लिए, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे है जहां पे मेडिटेरेनियन के अंदर है और अफ्रीका के देश भी वहां से बहुत दूर नहीं है और पश्चिम एशिया के देश भी वहां से पास हैं। तो इसलिए मुझे लगता है सोची समझी नीति के मुताबिक भारत ने इनके साथ अपनी रिलेशंस को अपग्रेड किया है।
1: इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाएं, सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के बारे में क्या कहा।
0: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप

0: इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: तो प्रोफेसर सचदेव, जैसे भी हमने सुना प्रधानमंत्री को कि रक्षा और सुरक्षा दोनों की जो उन्होंने बात कही, डिफेंस कोऑपरेशन की दोनों देशों के बीच में बात कही, तो आज दोनों देशों के बीच में एक काउंटर टेररिज्म पर भी एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप के लिए भी एक एमओयू साइन हुआ है। साथ ही दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया है 2026 से 2031 तक के बीच में। तो भारत साइप्रस संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में रक्षा और समुद्री सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
2: एक तो ये है क्योंकि पूरी दुनिया का, जैसा आप जानते हैं, वातावरण काफी तनावपूर्ण है और क्योंकि साइप्रस का अपना एक तनावपूर्ण हिस्ट्री रही है, और तीसरी बात यह है क्योंकि जैसे यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है और उसके चलते यूरोप के जितने भी देश हैं और साइप्रस भी उसका हिस्सा है, तो उसमें पूरे का पूरा आप देखते हैं कि जो सुरक्षा का जो प्रबंधन है पूरे यूरोप के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ और काफी जो नेटो के देश हैं यूरोप के अंदर उनकी भी, उसमें भी एक तरीके का तनाव, एक तरीके की थोड़ी दिक्कतें उसमें आ रही हैं। तो उसमें पूरे यूरोप के अंदर एक तो यह है कि अपनी सुरक्षा को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी ऑटोनॉमी को उसको बढ़ाने के लिए सुरक्षा को और खासतौर से डिफेंस जो इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी कुछ महीने पहले वहां पे एक वो जो व्हाइट पेपर पूरा यूरोपीय संघ ने जो निकाला था अपने डिफेंस के लिए, उसमें ये कहा गया था कि आने वाले सालों में 2030 तक यूरोप के पूरे देश मिलके 800-900 बिलियन यूरो और ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे। तो हम देखते हैं कि अभी जैसे प्रधानमंत्री पहले भी गए थे वहां पे चार देशों में जैसे मैंने कहा, और जर्मनी और फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे सुरक्षा संबंध बड़े हैं पहले डिफेंस के, तो उसमें जो पूरी नई पूरा डिफेंस इंडस्ट्री वहां पे जो पूरा बढ़ रहा है, काफी उसके अंदर निवेश हो रहा है। और भारत की हमारी जो है अपनी एम्बिशन है कि एक मेक इन इंडिया के अंदर हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री को हम मजबूत कर रहे हैं, और काफी अभी पिछले कुछ सालों में निर्यात भी हमारा डिफेंस से हुआ है। तो ये पूरा एक प्लान है जिसके अंदर हम उसको साइप्रस को अलग करके भी देख सकते हैं और पूरे यूरोप के साथ जो है हमारा जो संबंध, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, उसी पूरे संबंध के अंदर व्यापार की बात, निवेश की बात, तकनीक की बात और ग्रीन ट्रांजिशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में अभी सुरक्षा और डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला जो मामला है ये भी एक बहुत अहम मुद्दा उभरता हुआ आ रहा है। और ये जब हम देखते हैं कि जब साइप्रस के राष्ट्रपति भी यहाँ पे हैं, तो एक हमने पूरा रोड मैप पूरा डिफेंस कोऑपरेशन का वो साइप्रस और भारत के बीच में 5 साल के लिए वो भी एक पूरा तैयार किया है। और आतंकवाद के प्रति तो दोनों देशों की पहले से ही एक जैसी सोच रही है, और क्योंकि वो भी उससे जूझते रहे हैं पहले, तो इसलिए जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म है उसका भी मुझे लगता है कि द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भी और भारत के जो संबंध है यूरोपीय संघ के उसके अंदर भी, इन दोनों के आने से काफी मजबूती मिलेगी। तो ओवरऑल संबंध है वो पूरा यूरोप के साथ हमारा संबंध है। जब वो 2004 में जब यूरोपीय संघ को साइप्रस ने ज्वाइन किया था, तो वो एज ए डिवाइडेड साइप्रस वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर वो जो है यूरोजोन का भी हिस्सा बन गए हैं। तो जो यूरोपीय संघ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी काफी अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं, क्योंकि अब भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, तो उनकी चिंताएं भारत समझता है कि हमारी चिंताएं हैं, और क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है उसका फायदा भारत भी लेना चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और कनेक्टिविटी और ये सब बातें को आगे बढ़ाने के लिए इसको पूरी रणनीतिक साझेदारी हमारी उनके साथ बन रही है।
1: एक आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर सचदेव, भारतीय बिजनेसेस हैं जो यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं कि साइप्रस एक लॉन्च पैड के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा, बट इसके अलावा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक वाइडर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों के लिए एक आधार के रूप में और लॉजिस्टिक हब के रूप में साइप्रस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है भारतीय बिजनेसेस के लिए?
2: नहीं, भारत के बिजनेस देखिए ऑलरेडी वहां पे काफी हमारा जैसे निवेश वहां से आ रहा है, काफी भारतीय वहां पे बसे भी हुए हैं, और अभी जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि हम जो मोबिलिटी और माइग्रेशन के एग्रीमेंट है और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के बारे में भी बात काफी आगे बढ़ चुकी है, तो उसके बारे में भी कुछ समझौते जल्दी होने की उम्मीद है। उसका मतलब यह है कि दोनों सरकारें ये कोशिश करेंगी कि जो भारतीय वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं, उनके लिए भी काफी सुविधा हो जाए कि वो आराम से वहां पे जा पाएं और अपने व्यापार को वहां पे स्थापित कर पाएं और दोनों देशों के बीच में संबंध वो बढ़ाएं। और इसीलिए क्योंकि पूरे जो, जैसे आपने कहा कि जो उनकी भौगोलिक जो स्थिति है, वो हालांकि हर देश जैसे यूरोप में भी होता है अपने आप को कहता है कि

0: हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी है तो आप उसको एज ए गेटवे आप यूरोप के मान सकते हैं। चाहे आप इटली में गए थे तो इटली के प्रधानमंत्री वो कहती थी कि आप यहाँ से इंडियन ओशियन एंड मेडिटेरेनियन जो सी है दोनों का मिलाप
1: जी
0: होता है तो इंडो मेडिटेरेनियन जो बनता है। इसी तरीके से दूसरे देश भी कहते हैं, फ्रांस की
1: जी
0: भी, सब देशों की अपनी अपनी स्थिति है। लेकिन इसकी एक क्योंकि खास भूमिका है यूरोप के अंदर, और जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त इस पूरे इलाके में है, उसके अंदर मुझे लगता है भारत के लिए उसकी जो स्थिति है उसके साथ अच्छे संबंध बनाना, अच्छे संबंध हमारे हैं उनके साथ, लेकिन उन संबंधों को और आगे इंस्टीट्यूशनलाइज करना और उनको प्रगाढ़ बना के उसको आगे बढ़े, तो उसमें दोनों देशों के लोगों का फायदा होगा, हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी,
1: जी
0: और वैसे भी यूरोपीय संघ के अंदर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए अच्छा मुझे लगता है मौका मिलेगा।
1: प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया जी।
1: श्रोताओं, आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। ये धुन आप सुन रहे हैं हरजाई फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा है, RD बर्मन ने संगीत दिया है।
1: स्वागत है, मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज की चर्चा का विषय है

आए दिन बहार के, इस फिल्म का गीत गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं अखियों के झरोखे से। इस फिल्म का गीत गाया है हेमलता के साथ शैलेंद्र सिंह ने, गीत लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत से भी तैयार किया है रविंद्र जैन ने ही।

और अब सुनिएगा अजहर फिल्म में अरिजीत सिंह के साथ अंतरा मित्रा की आवाज़ है, मनोज यादव ने इसका गीत लिखा है और प्रीतम ने संगीत दिया है।

और लीजिए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं बड़े घर की बेटी। इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज हैं, संतोष आनंद ने गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम अंतराल के बाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने को है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्त

0: नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमी की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिएं और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिएं या ORS पिएं। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज

वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक वस्ता यूरोप इकतसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में शिरकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है।
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: भारत और कुब्रुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर उन्हें कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरक टास्क फोर्स का आगाज किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर

भारत की कौमी शाहराहों के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तई NHAI के अहद की अक्कासी करता है, जहां जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGAI की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदाम में एक दूसरे का तआवुन करेंगे। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वज़राए खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर खोज करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यर्मबेकाइव के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदाम और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन, पायदारी और आलमी पेशरफ्त में शराकत दारी के ब्रिक्स के मौजूदात पर अपने ख्यालात का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। CBI ने बताया कि ये नीट UG 2026 इम्तिहान के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। CBI ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट UG 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे, जिसे इस महीने की 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 GW रही, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरअज़्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में जारी IPL क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक

0: मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोताओं, हॉकी भारत का गौरवशाली खेल रहा है। वर्षों तक भारतीय हॉकी ने विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। आज भी जब युवा खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो उनके हाथों में केवल हॉकी स्टिक नहीं होती बल्कि देश की उम्मीदें और भविष्य भी होता है।

इन्हीं युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। यह प्रतियोगिता केवल एक खेल आयोजन नहीं बल्कि एशिया के उभरते खिलाड़ियों की क्षमता, अनुशासन और खेल भावना का परिचय भी है। इस टूर्नामेंट में भारत सहित एशिया के कई देश भाग लेते हैं, जहां युवा खिलाड़ी अपने कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है, यही कारण है कि देशवासियों की उम्मीदें इन खिलाड़ियों से लगातार बढ़ रही है।

पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 का आयोजन जापान में 29 मई से 6 जून 2026 तक किया जा रहा है। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026 पर यह वार्ता। वार्ताकार है देवेंद्र खुराना।

श्रोताओं नमस्कार। जूनियर अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जापान में खेला जाना है। 29 मई से 6 जून के बीच महिलाओं के वर्ग में 8 टीम्स और पुरुषों के वर्ग में 9 टीम्स हिस्सा लेंगी। पुरुषों की 9 टीम्स को 2 पूल्स में विभाजित किया गया है। पूल ए में जापान, इंडिया, कोरिया, कजाकिस्तान और चाइनीज तेपई की टीम्स खेलेंगी। पूल बी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और चाइना को रखा गया है। महिलाओं के वर्ग में 8 टीम्स हिस्सा लेंगी। पूल ए में भारत, सिंगापुर, कोरिया और मलेशिया और दूसरी तरफ पूल बी में जापान, चाइना, चाइनीज तेपई और बांग्लादेश की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन इन खेलों का आयोजन कर रहा है। एशिया कप के अंतर्गत पहले लीग मैचेस खेले जाएंगे और प्रत्येक पूल की टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। फाइनल 6 जून को खेला जाएगा। एशिया कप के मैचेस कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज के हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। एशियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स के दौरान हुई। उस समय एशियन हॉकी फेडरेशन के फाउंडिंग मेंबर्स थे भारत, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया और पाकिस्तान। सुल्तान अजलन शाह एशियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे 1990 से लेकर 2014 तक। भारत की महिलाओं और पुरुषों के जूनियर प्लेयर्स ने एशिया कप की तैयारी के अंतर्गत 4 मैचेस की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भोपाल में खेली। मैचेस खेले गए 15 मई, 17 मई, 19 मई और 20 मई को। इस दौरान महिलाओं की कोच रही रानी रामपाल और पुरुषों के कोच रहे सरदार सिंह। जापान

में खेले जाने वाले एशिया कप के अंतर्गत पुरुषों के वर्ग में लीग मैचेस के दौरान भारत अपना पहला मैच कजाकिस्तान के विरुद्ध 29 मई को खेलेगा। जापान के साथ भारत का मुकाबला होगा 31 मई को। इसके बाद 1 जून को भारत कोरिया के विरुद्ध खेलेगा। अपने अंतिम लीग मैच में भारत 3 जून को चाइनीज तैपेई के विरुद्ध खेलेगा। 6 जून को फाइनल खेला जाना है। 5 जून को सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता और अंडर 21 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में अंतर है। जापान ने 2025 में पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में विजय प्राप्त की थी। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान पर 3-0 से जीत दर्ज की थी। पिछले वर्ष मलेशिया ने एशिया कप जूनियर हॉकी के अंतर्गत 3रा स्थान हासिल किया। 2025 का अंडर 18 एशिया कप हॉकी चाइना में खेला गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 18 टीम्स के बीच 4 मैचेस की सीरीज खेली गई। भारत की महिला हॉकी टीम ने चौथे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दर्ज की। इससे पहले के 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। पुरुषों के वर्ग में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 18 वर्ग में 4 मैचेस खेले गए। 1 मैच भारत ने जीता, 1 जीता ऑस्ट्रेलिया ने और 2 मैचेस ड्रॉ रहे। अब बात करते हैं एशियन गेम्स हॉकी क्वालिफाई टूर्नामेंट का, जो कि बैंकॉक में संपन्न हुआ पिछले माह। इस टूर्नामेंट के टॉप 6 टीम्स ने एशियन गेम्स मेंस हॉकी इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओमान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और चाइनीज तैपेई ने एशियन गेम्स के मेंस हॉकी इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2022 के एशियन गेम्स में मेंस हॉकी की टॉप 6 टीम्स ने पहले ही डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है। ये टीम्स हैं भारत, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान और मलेशिया। इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर के महीने में एशियन गेम्स का आयोजन जापान में होना है। अब बात करते हैं कि भारत में हॉकी लोकप्रिय क्यों हुआ। इसका कारण है कि पुरुषों की भारतीय टीम ने 1928 और 1956 के बीच ओलंपिक्स में लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीते। अब बात करते हैं जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के बारे में, जो कि अंडर 21 एज ग्रुप के प्लेयर्स खेलते हैं। अंडर 21 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई 1987-88 में। टूर्नामेंट खेला गया कराची में, लेकिन उस समय केवल पुरुषों की हॉकी का टूर्नामेंट आयोजित किया गया। महिलाओं के लिए पहली बार जूनियर अंडर 21 एशिया कप हॉकी का आयोजन हुआ 1992 में। टूर्नामेंट खेला गया मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में। जूनियर अंडर 21 एशिया कप टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर टॉप 6 टीम्स जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के लिए क्वालिफाई करती हैं। मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का प्रारंभ हुआ 1979 में। उस वर्ष पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को जीता। जर्मनी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट को 8 बार जीत चुका है। भारत ने इस टूर्नामेंट को 2 बार जीता है। 2001 और 2016 में भारत इस टूर्नामेंट में विजयी रहा। 2001 के फाइनल में भारत ने अर्जेंटीना पर विजय हासिल की और 2016 के फाइनल में भारत ने बेल्जियम पर जीत हासिल की। अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट को 2 बार जीत चुका है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन करता है। जूनियर वर्ल्ड कप हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। दूसरी तरफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप को 4 बार जीत चुका है। नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी हॉकी वर्ल्ड कप को 3 बार जीत चुके हैं। बेल्जियम और भारत ने विश्व कप को 1 बार जीता है। भारत की वुमेन्स हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 4 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में खेलेगी। मैचेस खेले जाएंगे 26 मई, 27 मई, 29 मई और 30 मई को। सभी मैचेस पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके बाद वुमेन्स हॉकी टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएगी। भारत की टीम को न्यूजीलैंड में FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप में पार्टिसिपेट करना है। नेशंस कप 15 जून और 21 जून के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में इंडिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, जापान, फ्रांस, चिली, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरुग्वे पार्टिसिपेट करेंगे। पहला FIH वुमेन्स हॉकी नेशंस कप खेला गया था दिसंबर 2022 में। इसका आयोजन स्पेन में हुआ था। इस टूर्नामेंट में भारत विजयी रहा था। फाइनल में भारत ने स्पेन पर 1-0 से विजय हासिल की थी। इस टूर्नामेंट का आयोजन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करती है। 2023-24 में भी इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल में स्पेन ने आयरलैंड पर 2-0 से जीत दर्ज की। 2024-25 में खेले गए इस टूर्नामेंट में

न्यूजीलैंड ने आयरलैंड पर 4-2 से जीत दर्ज की थी। अब नज़र डालते हैं मेंस हॉकी की वर्ल्ड रैंकिंग्स पर। पहले स्थान पर नेदरलैंड्स और दूसरे स्थान पर बेल्जियम हैं। ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है, भारत 8वें स्थान पर है। वुमेन्स हॉकी के वर्ल्ड रैंकिंग्स में नेदरलैंड्स पहले और अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है, बेल्जियम तीसरे स्थान पर है, भारत वर्ल्ड रैंकिंग्स में 9वें स्थान पर है। जूनियर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के लिए भारत ने 18 प्लेयर्स की घोषणा कर दी है। केतन कुशवाहा भारत की पुरुष टीम के कप्तान रहेंगे। टीम ने भोपाल के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर पर अभ्यास किया। 2025 में अंडर 18 एशिया कप मेंस हॉकी टूर्नामेंट खेला गया था चाइना में। फाइनल में जापान ने पाकिस्तान पर 3-0 से जीत दर्ज की थी। मलेशिया तीसरे स्थान पर रहा था, चौथे स्थान पर बांग्लादेश रहा था। 2025 में वुमेन्स अंडर 18 एशिया कप हॉकी का फाइनल भी जापान ने जीता था। जापान ने फाइनल में चाइना के विरुद्ध मुकाबले में 1-0 से जीत दर्ज की थी। बांग्लादेश तीसरे स्थान पर और कजाकिस्तान चौथे स्थान पर रहा था। पिछली बार अंडर 21 एशिया कप हॉकी खेला गया था मस्कट में। वर्ष था 2024 और नवंबर तथा दिसंबर के महीने में जूनियर एशिया कप हॉकी खेला गया था। 2024 के एशिया कप हॉकी में भारत विजयी रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर ये खिताब अपने नाम करेगी। हमारी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं। धन्यवाद।

0: अभी आपने अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026 पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थे देवेंद्र खुराना। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपके लिए लिया है प्यासा सावन से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, संतोष आनंद ने गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

और लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं यसुदास को। इसका संगीत तैयार किया है राज कमल ने और फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

स्वयंवर फिल्म का वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत है राजेश रोशन का। लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपने हमें चिट्ठियां भेजी हैं और हमने आपके गीत चुन लिए हैं आपको सुनवाने के लिए, तो आप तैयार हैं ना? हम आपको आपकी फरमाइश का पहला गीत सुनवा रहे हैं। गीत फिल्म का महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज़ है। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है। आप सभी ने इस गीत को सुनने के लिए हमें चिट्ठियां भेजी हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉविन ने इसी गीत को सुनना चाहा है। गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 7 इंदौर से अनिल, नेहा फड़ से सीमा, रुबीहा, पलक, पूजा, नैना, सुषमा और सलीम। गाना सुनवाने से पहले हम आपको पता बता देते हैं, जिससे कि यदि आपको अपने पसंद का कोई गाना सुनना है तो हमारे इस पते पर आप भेज सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आपकी लिखावट यदि सुंदर होगी तो हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, वरना आपने कुछ लिखा है हम कुछ और पढ़ देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी आपकी फरमाइश में अपने हाथ से लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखिए कि जो पढ़ने में आ जाए। बात हो रही थी कि आपको पता बता दें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश 462002। तो शुरुआत में ही मैंने आपको यहाँ का पता बता दिया है और कहा है कि सुंदर लिखावट में लिखेंगे तो आपके हर पत्र को हम शामिल कर पाएंगे। लीजिए हमारे सभी श्रोताओं की पसंद पर गीत फिल्म का ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में हसरा जयपुरी ने गीत को लिखा है और रामलाल ने इसका संगीत तैयार किया है। इस गीत को सुनना चाहा है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार ने। तो आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत।

आपकी फरमाइश का अगला गाना हम आपको सुनवाएं और आपकी पसंद हम बता दें पहले। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा है। आप सभी ने गीत है गीत गाता चल, आरती मुखर्जी की आवाज़ है, रविंद्र जैन का गीत और संगीत है। तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम पहुंचा रहे हैं आप तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना जैन। अगला गीत प्रेम गीत से हमने आप कर लिया है आपकी पसंद का। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है, इंदिवर ने गीत को लिखा है और जगजीत सिंह ने इसका संगीत तैयार किया है। इस गीत को पसंद किया है दिल्ली से ज्योतिषाचार्य बिंदु जैन, पंडित अशोक गोयल, चेतन जैन, आयुषी जैन ने। अशोकनगर से ममता जैन, राकेश जैन, जिम्मी जैन, प्रियंका जैन और विक्की जैन ने। कोटा से सरोज योगी, सुरेश योगी ने। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम गीत का ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं संगीत फिल्म है अनुराधा पौडवाल को। संतोष आनंद ने गीत को लिखा है और आनंद मिलंद ने इसका संगीत तैयार किया है। आप सभी की पसंद पर हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। पालीताना से शशि जैन, प्रमिला सोनी, डोंगरगांव से जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। आप सभी की पसंद पर सुनिएगा ये गीत।

और लीजिए, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं तेरी पायल मेरे गीत। एसपी वाला सुब्रमण्यम की आवाज़ है, हसन कमाल ने गीत को लिखा है और नौशाद ने संगीत दिया है। इस गीत को सुनना चाहा है झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा, कोलार रोड कोबालम से। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजाला, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने। आप सभी की पसंद पर ये गीत है।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित राजन साजन मिश्र का राग यमन में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, इसमें पंडित राजन साजन मिश्र का राग यमन में ख्याल गायन। हम आकाशवाणी

0: मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।